0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपके एक्स जैसा मनहूस चेहरा लेकर मंडे इज बैक अगेन, बट द गुड न्यूज इज दैट इट्स ऑलमोस्ट ऑन इट्स वे आउट. एंड व्हाइल इट इज ऑन इट्स वे आउट, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं विच यू विश्ड वॉज ऑन इट्स वे आउट लाइक द मंडे टुडे, लेकिन वो कमबख्त रिलेशनशिप खत्म ही नहीं होता बिकॉज द एक्शन इज सो गुड. एक तो एक्शन की वजह से ना रिलेशनशिप्स में लोग मारे जाते हैं. अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, Why don't you hit me up? We will talk about it and end your Monday on a delightful note. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, और जैसे भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, hit me up. We will talk about it and पक्का make you feel better. So while you find me on the gram या Facebook, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: But Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
3: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन की तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव में जोड़ायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब
6: मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को झूठ तो बोल दिया था यू आर अ फिटनेस फ्रीक, जब उसे पता चलेगा कि आप तो अपने बेड से बाथरूम तक जाने से पहले 100 बार सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन एग्जैक्टली?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: यू नो मेरा इशारा किस तरफ है. इट इज टाइम टू डिस्कस ऑल योर कन्फेशंस. और अपनी कन्फेशन डिस्कस करने के लिए टू स्पिल द टी मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी, हाउ आर यू?
1: आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू नॉटी गर्ल?
3: Yes,
1: you are. आपने इंस्टा पे अपने नॉटीनेस के जो मुझे छोटे छोटे नमूने दिए थे, आई वॉन्ट टू हियर दी एंटायर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी.
3: मैं ना अकेले रहती हूँ, आई एम सिंगल एंड इंडिपेंडेंट वुमन एंड मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ. तो एक दिन क्या हुआ, मेरे फ्लैट की लाइट चली गई. तो मैंने भैया को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को. तो बोला कि मैम जो नीचे जो मीटर बॉक्स है उसकी चाबी चाहिए. तो मेरे पास नहीं थी, मेरे नेबर के पास थी. तो मैं उससे मैंने चाबी मांगी, उसने हेल्प कर दिया मुझे और सब फिक्स हो गया. बट हमारे पास एक्सचेंज हो गए थे उस दिन, ठीक है. उस दिन के बाद से हम रोज रात में ना सेक्सिंग करते हैं. एक दिन ऐसा नहीं कि हम ना करें, हम लोग पूरी रात बातें करते हैं, ठीक है.
1: सुबह एक सेकेंड, नॉटी बातें करते हो आप पूरी रात, है ना?
3: पूरी रात. और कुछ नहीं पता मुझे कि वो सिंगल है या नहीं, उसे नहीं पता मैं सिंगल हूँ, बट हम कर रहे हैं और हमें मजा आ रहा है. हम रात में मतलब इट्स लाइक अ रोल प्ले, ठीक है. हम रात में चले जाते हैं सेक्सिंग मोड में. सुबह वो ऑफिस जाता है, मैं ऑफिस जाती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वी प्रिटेंड लाइक नथिंग हैपेंड. हम लिफ्ट में मिलते हैं, हम हाय हेलो करते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. सोसाइटी में तो फंक्शन हो चुके हैं सबसे, हम मिलते हैं लोग साथ. मतलब कोई कह नहीं सकता कि हम लोग जानते भी एक दूसरे को, बट हम लोग रात में कर रहे हैं नॉटी बातें कर रहे हैं. वी आर डूइंग थिंग्स विद ईच अदर ऑन टेक्स्ट बट नॉट इन रियल लाइफ. और हमारी डील है कि हम कभी ऐसे ना सामने आएंगे तो मतलब एक दूसरे के सामने कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा एक दूसरे को भी. दूसरों को तो छोड़ो, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा कि ओ हम रात में क्या गुड़ खिलाते हैं.
1: आर यू सीरियस?
3: या मतलब इट्स हैपनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ. बढ़िया.
1: इज इट
3: क्या है,
1: इसे डिस्क्राइब करने के लिए देयर इज ओनली वन वर्ड, KINK. सीरियसली, लाइक आई कांट इवन इमेजिन. एंड आई डोंट थिंक आप दोनों में से किसी को रोशिफिकेशन की जरूरत है, बट बिकॉज यू आर हियर एंड बिकॉज यू शेयर्ड सच अ नॉटी स्टोरी विद मी, कर दूं आपको रोशिफाई?
3: प्लीज कर लो.
1: देयर यू गो,
4: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: अब आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा दैट द नेक्स्ट स्टेप दैट यू टेक, इफ यू एवर टेक अनदर स्टेप इसके बाद विद योर नेबर, यू आर गोना कॉल मी एंड टेल मी अगेन. यू आर सच अ नॉटी गर्ल. आपसे बात करके इतने मजे आए. और अगर आपकी भी जिंदगी में आपने ऐसे ही कोई नॉटी किंकी काम किए हैं, वाई डोंट यू सेंड मी अ मैसेज ऑन इंस्टा या FB एंड व्हाटएवर यू डू. कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
0: इस राखी बोल दो दिल की बात, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
6: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
7: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: India ke rang, sur aur swad, sab kuch ek jagah.
8: Experience Janmashtami festival with Krishna Leela, traditional dances, live music, bhajans, delicious food, shopping and kids activities.
10: Sunday, August 23rd, 1 to 6 p.m. Elmer B. Boyd Park, New Brunswick. Free entry and parking. For more information, visit newbrunswickculturalcenter.com. Don't miss it.
4: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
11: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
4: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
12: Isse apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
4: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Roshi Baba! Roshi Baba!
2: Calm down, my bhagjano. आज आपके लिए मेरे पास एक टिप है, ओके, समथिंग दैट आई लर्नड आउट ऑफ माई ओन पर्सनल लाइफ. एक चीज जो मोहब्बत में आपको नहीं करनी चाहिए वो सिंपली ये है दैट मोहब्बत में कभी भीख मत मांगना. डोंट एवर गो बेगिंग फॉर लव, क्योंकि असली प्यार जो होता है ना वो इतने नेचुरली फ्लो करता है और इतना एफर्टलेस होता है जैसे मानो एक बहती हुई नदी. और अगर आपको अपने प्यार के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, यू विल नेवर गेट द लव दैट यू आर लुकिंग फॉर. और आप किसी से वो चीज़ मांग रहे हो जो वो क्लियरली इक्विप्ड नहीं है आपको देने के लिए. लव इज सपोज टू लिफ्ट यू हायर, नॉट ब्रिंग यू डाउन टू योर नीज. अगर आपके घुटनों पर लेकर आ रहा है ना, आई वुड सजेस्ट यू प्रे बिकॉज दैट्स अ ब्यूटिफुल पोजिशन टू प्रे इन, बट डोंट एवर गो बेगिंग फॉर लव. और अगर जिंदगी आपको ऐसे मकाम पर ले आई है एंड यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई विल ऑलवेज ऑनर एंड प्रोटेक्ट योर लव. एंड ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आप पिछले दो साल से एक सिचुएशनशिप में हो, लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. अब इन दो सालों में आपको लग रहा है कि हम बहुत ही जल्दी सिचुएशनशिप से रिलेशनशिप की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं. देन यू फाइंड आउट नॉट रियली, बट अगले महीने तक हो जाएगा, चल दिवाली तक हो जाएगा, चल राखी तक हो जाएगा. आप उस स्टेज पर हो एंड देन दिस जेंटलमैन ऑन द अदर साइड ऑफ द सिचुएशनशिप, वो आपसे कहता है कि यार हमसे ना हो पाई दीदी, बहुते हो गया, दो साल बस बहुते फन, चलो अब कट लो. और दीदी का जो दिल है वो टूटे जा रहा है कि भाई मुझे लग रहा था हम रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं और ये तो आप कुछ और ही बातें कर रहे हैं जनाब, क्या हम सेम चैप्टर ऑफ द सेम बुक पढ़ रहे हैं. एंड देन जनाब टर्न्स अराउंड एंड टेल्स यू कि भाई इतना काहे गुस्सा हो रही हो, इतना काहे तुम्हारा दिल टूट रहा है, सिचुएशनशिप ही तो था, हमने कभी रिलेशनशिप कहा ही नहीं. और एक बार जब वो आई लव यू बोला था, वी वर जस्ट ड्रंक यार, और अगर मैंने अपने बेड को हमारा बेड बोल दिया तो क्या, इट्स अ स्मॉल थिंग, इसकी वजह से दिल मत तोड़ यार, इट्स नॉट कूल. नॉट कूल ये जो बिहेवियर होता है ना, जो बॉर्डरलाइन गैस लाइटिंग होता है कि दिल तोड़ दिया, ऑल्सो कह रहे हैं कि बुरा मत फील करो, इट्स नॉट कूल. इसे कहते हैं सिचुएशन स्विच. तो जी हाँ बहनों और भाइयों, अभी तक तो हमें पता था दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अ सिचुएशनशिप, व्हिच इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली इट्स टेरिबल. लेकिन सिचुएशनशिप के बाद अब एक और ये मास्टर टर्म आया है, विच इज सिचुएशन स्विच, विच मीन्स कि सामने वाला एक तो आपको रिलेशनशिप की तरफ नेविगेट नहीं कर रहा है, और दूसरा जब आपका दिल तोड़ रहा है प्री मच्योरली विदाउट टेलिंग यू, विदाउट इन्फॉर्मिंग यू, देन ही इज टेकिंग अवे योर राइट टू फील बैड अबाउट इट. भाई इतना निर्दयी.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: हाँ, और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com. Iskut.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कुड़ी कहती बेबी पहला जगुआर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो, प्यार ले लो।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपनी पहली डेट विद अ पोटेंशियल 10/10 के साथ स्पॉइल करना चाहते हो, लाइक एक ही बार में सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाना चाहते हो, देन दो काम कर लो. गेट ड्रंक विद योर न्यू फाउंड बे पहली डेट पर, और वाइल यू आर ड्रंक अपने एक्स के बारे में कॉन्वर्सेशन कर दो इस पॉइंट तक कि आपका जो करंट क्रश / बॉयफ्रेंड टू बी है अपने बारे में इतना कुछ सोचे और इनसिक्योर हो जाए कि उसके बाद ही डिसाइड्स ही नेवर वांट्स टू मीट यू अगेन, क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम के धज्जियां तो आप उड़ा ही चुके हो. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वन ऑफ माय कॉलीग्स एट वर्क डिड. शी वाज सो into this guy aur wo itni anxious aur nervous thi that she decided to get drunk on the first date, aur unfortunately once she was drunk usne apne ex ke bare mein baat karna shuru kiya aur uske baad rona shuru kiya. Us time to uske 10/10 boyfriend to be ne use sambhal liya, but as soon as they got home he sent her a message saying I think you're still in love with your ex. कुछ समय बाद एक बार फिर से बात करके देखते हैं, ठीक है. आई थिंक यू नीड टू गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड गेट इनटू थेरेपी. आउच. अगर आपके साथ भी जिंदगी में ऐसे ही वाहियात से वाहियात बद्दो बद्दी होते जा रहा है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई डोंट ड्रिंक, सो आई विल नॉट से थिंग्स टू यू दैट विल हर्ट यू. ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: यार पीयूष जनरल स्टोर कितना सही लग रहा है। ओ मधु स्वीट्स तो बहुत ही अमेजिंग है। ओहो कमाल कुल्फी वाले हमें भी कुल्फी खिला दो। इमेजिन आप एक रोमांटिक डेट पर जा रहे हो एंड आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कंसिस्टेंटली सामने जितनी भी दुकानें आ रही है उनका नाम ले लेके आपको टिप्पणियां दे रहा है। यू माइट फाइंड इट इंटरेस्टिंग पहली डेट पर, बट अगर वो कंसिस्टेंटली हर बार ये करे तो कौन सी डेट पर जाकर आप इस बॉयफ्रेंड को डंप कर दोगे? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू वन ऑफ माय कॉलीग्स एट वर्क। शी वाज लाइक, यार ये बंदा इतना 10/10 लग रहा था जब मैंने इसे राइट स्वाइप किया। पहली डेट कैफे में थी तो पता नहीं चला, लेकिन इसकी बीमारी ये है जब भी इसे गाड़ी में डालो ये सामने के जितने भी स्टोर्स, चाट की दुकानें, कुल्फी की एक भंडार, इन सब की नाम ले लेके टिप्पणियां देता है। शी वाज लाइक, आई जस्ट कुडंट डील विद इट। चौथी बार जब उसने ऐसा किया मैंने गाड़ी रोकी, उसे गाड़ी से निकाला, सॉरी बोला एंड आई जस्ट ज़ूम्ड ऑफ बिकॉज आई रियली हैड टू डंप दिस गाय। ये बीमारी काफी खराब और कंटेजियस लग रही थी। और अगर आपकी भी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है दैट यू रियली हैड टू डंप समबडी फॉर द स्ट्रेंजेस्ट रीजन, मेरे पास ऐसे काफी रीजन है, सो डोंट स्मर्क, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, लेट्स टॉक अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
4: मिर्ची, फ्रेश माल।
5: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को झूठ तो बोल दिया था कि यू आर अ फिटनेस फ्रीक, जब उसे पता चलेगा कि आप तो अपने बेड से बाथरूम तक जाने से पहले 100 बार सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन एग्जैक्टली?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: यू नो मेरा इशारा किस तरफ है. इट इज टाइम टू डिस्कस ऑल योर कन्फेशंस, और अपनी कन्फेशन डिस्कस करने के लिए टू स्पिल द टी मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी, हाउ आर यू?
1: आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू नॉटी गर्ल?
3: Yes,
1: you are. आपने इंस्टा पे अपने नॉटीनेस के जो मुझे छोटे छोटे नमूने दिए थे, आई वॉन्ट टू हियर दी एंटायर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी.
3: मैं ना अकेले रहती हूँ, आई एम सिंगल एंड इंडिपेंडेंट वुमन, एंड मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ. तो एक दिन क्या हुआ, मेरे फ्लैट की लाइट चली गई. तो मैंने भैया को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को, तो बोला कि मैम जो नीचे जो मीटर बॉक्स है उसकी चाबी चाहिए. तो मेरे पास नहीं थी, मेरे नेबर के पास थी. तो मैं उससे मैंने चाबी मांगी, उसने हेल्प कर दिया मुझे और सब फिक्स हो गया. बट हमारे बस एक्सचेंज हो गए थे उस दिन, ठीक है. उस दिन के बाद से हम रोज रात में ना सेक्सिंग करते हैं. एक दिन ऐसा नहीं कि हम ना करें, हम लोग पूरी रात बातें करते हैं, ठीक है.
1: सुबह एक सेकेंड, नॉटी बातें करते हो आप पूरी रात, है ना?
3: पूरी रात. और कुछ नहीं पता मुझे कि वो सिंगल है या नहीं, उसे नहीं पता मैं सिंगल नहीं, बट हम कर रहे हैं और हमें मजा आ रहा है. हम रात में, मतलब इट्स लाइक अ रोल प्ले, ठीक है. हम रात में चले जाते हैं सेक्सिंग मोड में, सुबह उठते वो ऑफिस जाते हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वी प्रिटेंड लाइक नथिंग हैपेंड. हम लिफ्ट में मिलते हैं, हम हाय हेलो करते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. सोसाइटी में इतने फंक्शन हो चुके हैं सबसे, हम मिलते हैं लोग साथ, मतलब कोई कह भी नहीं सकता कि हम लोग जानते भी एक दूसरे को, बट हम लोग रात में.
4: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो,
3: जानते भी एक दूसरे को, बट हम लोग रात

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

मुझे ना बहुत सारे साल और बहुत सारे आड़े टेढ़े रिलेशनशिप्स लग गए ये समझने में कि जिस रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हंस सकते हो, एंड जरूरी नहीं है कि कोई जोक क्रैक हुआ हो, बस जिंदगी पे हंस सकते हो आप, अपने जिंदगी के सर्कमस्टांसेस पे हंस सकते हो. यू नो दैट दैट रिलेशनशिप इज द वन फॉर कीप्स. अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बिना बात के हंसा देता है, जिससे बात करते करते आपको जोक सूझ जाते हैं और आपसे बड़ा स्टोइक इंसान इस दुनिया में कोई नहीं था, देन यू नो दैट दैट इज लव. एंड दैट इज द काइंड ऑफ लव जो जिंदगी में मुश्किल से एक बार मिलता है. तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको रोते रोते हंसा सकता है, देन मेरी तरफ से उस इंसान को आई लव यू बोल देना, बिकॉज उस इंसान के होने से ही आपकी जिंदगी में खुशी है. अब जल्दी से मुझे बताओ कि आपकी जिंदगी में ये रोल कौन प्ले करता है. एंड टू टेल मी दैट, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. एंड व्हाइल यू डू दैट, एक छोटी सी चीज जो मैं कितने अरसे से आपसे

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
0: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बट मुझे तो इन दोनों को देख के बहुत मजा आया. आई थिंक द एंटायर इंडिया लव्ड इट. पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और रोज मैं एक फिल्म के बहुत सारे किस्से कहानियां लेकर के आती हूँ. आज जो फिल्म है वो डिम्पल कपाडिया की कमबैक फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से उन्होंने एक और बेहतरीन फिल्म छोड़ी थी, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी गिवन डेट्स फॉर दिस फिल्म. अब ये कौन सी फिल्म थी बताओ बताओ. आफ्टर 14 इयर्स बॉबी के बाद जब उन्होंने ये फिल्म की, उनका हीरो भी सेम था, लेकिन सिर्फ एक हीरो नहीं था इस फिल्म में, दो हीरोज थे. अब इससे ज्यादा क्लूज नहीं दे सकती हूँ, सोच के रखो, मैं गानों के उस पार बताती हूँ आपको. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यू आर लिसनिंग टू मी ऑन ऑफकोर्स मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पाटिया ऑलरेडी एग्जैक्ट वही डेट्स दे चुकी थी सागर को, तो शी डिनाइड डूइंग द फिल्म. नाउ इन अ वे इट वाज गुड बिकॉज हमें श्रीदेवी द वेटरन एक्ट्रेस भी एकदम अलग ही अवतार में देखने को मिली, है ना. पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सागर की बातें हो रही आज, तो बस इस फिल्म के गाने भी होंगे. ऑल यू गॉट टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स, कहीं भी मत जाना. मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स,
4: ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये वाला सीन तो मतलब पूरा इंडिया नहीं भूल सकता। पुरानी जीन्स पे है आप और श्रेया के साथ, और सागर की बात हो, डिम्पल कपाटिया का ये सीन की बात नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? वेल, द फ्लीटिंग टॉपलेस सीन जो उन्होंने किया जब एक गाना शूट होता है और उनका जो टॉप है वो चट्टान में फंस जाता है, एंड शी सडनली गेट्स अप एंड ओहो। तो सागर की बातें करते करते इस फिल्म के सारे किस्से जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो भाई मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आती हूँ। अच्छा, इस फिल्म में इवन दो ऋषि कपूर वॉज द मेन कैरेक्टर, फिर भी ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। क्यों? उसके पीछे एक मेजर रीजन था। रीजन तुम्हें तो बताइए, मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, कभी कभी आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ, अभी शेयर करूंगी। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर इसलिए डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनको लगा था कि ये जो फिल्म है ये बॉबी के फेमस होने के बाद, पॉपुलर होने के बाद, हिट होने के बाद आ रही है. इसमें डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री जो है वो एकदम बॉबी जैसी रिपीट होगी, विच डिड नॉट हैपन. ही एक्चुअली अक्यूज द डायरेक्टर रमेश सिप्पी, उन्होंने बड़ी सारी फिल्म मैगजीन्स में उस टाइम पे इंटरव्यू दिया कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डिटेल में दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रमेश सिप्पी फोकस्ड मोर ऑन शोइंग यू नो द कमबैक ऑफ डिम्पल कपाडिया. इस चक्कर में उनका कैरेक्टर साइडलाइन हुआ और ही डिड नॉट गेट द लॉरल्स फॉर द फिल्म. इट वॉज डिम्पल. पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एक आर्टिस्ट भी आए थे इस फिल्म के प्रीमियर पे. वो कौन थे और कितने अलग ढंग से वो आए थे ये इंटरेस्टिंग बताऊंगी वापस और श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस समय के अखबारों की ये सबसे बड़ी खबर हुई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है सागर की। इट वॉज अ कमबैक फिल्म डिम्पल कपाडिया की। 14 साल के बाद वो फिर से कैमरा फेस कर रही थी, मतलब बॉबी करके वो काका यानी राजेश खन्ना के साथ बस शादी में सेटल हो गई थी और उसके बाद उन्होंने फिल्म को टाटा बाय बाय कह दिया था। आफ्टर 14 ईयर्स शी मेड अ कमबैक विद द फिल्म Of course, Sagar and Ramesh Sippy was directing the film. अब जब इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो उसके मेन हीरो फिल्म के लीड्स यानी ऋषि कपूर या फिर कमल हासन नहीं थे, बल्कि पता है कौन थे? MF हुसैन साहब, the renowned painter MF हुसैन साहब। वो इस फिल्म का प्रीमियर बेयरफुट, नंगे पैर देखने आए थे और फिल्मी मैगजीन्स ने, न्यूज़पेपर ने बड़े बड़े आर्टिकल्स इस पे लिखे थे। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें विद मी श्रेया। वापस आओ और भी करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
5: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ कर्नल सिंह, ओ कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

कहते तो ये भी है कि उस समय रमेश सिप्पी एंड डिंपल कपाटिया दोनों का अफेयर हुआ था ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है, एक ऐसी फिल्म जो 14 साल के बाद फिर से डिंपल कपाटिया को बड़ी स्क्रीन पे दिखाने वाली थी, क्योंकि उससे पहले तो डिंपल कपाटिया ने बॉबी की और मेजर हिट हुई, स्मैशिंग हिट हुई एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन फिर वो राजेश खन्ना के साथ शादी करके सेटल कर गई और फिर उसके बाद रमेश सिप्पी की इस फिल्म से उन्होंने कमबैक किया। अब सिप्पी साहब और डिंपल कपाटिया का अफेयर हुआ और इसके बारे में सबने जम करके लिखा। रमेश सिप्पी चाहते थे कि डिंपल कपाटिया सागर फिल्म करें और ना कि सदमा करें, सदमा भी उनको ऑफर हुई थी और भाई डिंपल कपाटिया ने हाँ कह दी। इस बात को लेकर के भी फिल्मी मैगजीन्स ने बहुत कुछ लिखा था। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक इस फिल्म के गानों के साथ भी, तो बस वापस आओ

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स,
4: ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऐसा बहुत कम बार होता था उस टाइम पे, क्योंकि एक्टर्स के बीच में ना बहुत राइवलरी होती थी। जब एक एक्टर दूसरे एक्टर की खुल करके तारीफ करे, और कमल हसन ने सागर फिल्म में ऋषि कपूर के लिए किया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, कमल हसन ने ऋषि कपूर की जम करके ऑन स्टेज तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने एक्टर्स को देखा है, इतने एक्टर्स से मिले, लेकिन ऋषि कपूर एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग है। एंड ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि ऋषि कपूर को खुद नहीं पता है कि वो कितने कमाल के लगते हैं, और लोगों का दिल, लड़कियों का दिल वो कैसे चुरा लेते हैं जैसे ही ऑन स्क्रीन आते हैं। वैसे कमल हसन इस फिल्म के लिए दो कैटेगरीज में फिल्मफेयर अवार्ड्स की नॉमिनेट हुए थे। कौन सी थी वो दो कैटेगरीज और किसके लिए जीते? आई विल लेट यू नो, कम राइट बैक। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कमल हसन गॉट नॉमिनेटेड इन बोथ द कैटेगरीज। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है और कमल हसन को ना दोनों कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था इन फिल्म फेयर। ही गॉट नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी, ऑल्सो इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी, और जीता किस में उन्होंने? बेस्ट एक्टर। मतलब ये तो एक्चुअली में विन एंड विन सिचुएशन थी कि भाई एक्टर भी हैं, सपोर्टिंग एक्टर भी हैं, एक ना एक अवार्ड तो उनके नाम होना ही था। बट यस, इट वेंट टू बी बेस्ट एक्टर वाली कैटेगरी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ अभी इस फिल्म के गाने शुरू करते हैं। कम राइट बैक।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टू बैक एक्शन फिल्मों के बाद रमेश सिप्पी साहब को लगा कि भाई मैं भी प्यार में हूं तो कुछ प्यार भरा बनाए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, रमेश सिप्पी साहब ने ना 3 फिल्में बैक टू बैक बना डाली थी एक्शन की, यानी शोले में 1975, वेल देन शान हैपेंड इन 1980, उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म थी शक्ति 1982, और ये तीनों सुपर डुपर हिट फिल्म थी। बट कहते हैं कि सागर के टाइम पे रमेश सिप्पी वॉज इन लव, वॉज हैविंग एन अफेयर विद डिम्पल कपाटिया, एंड ही वॉन्टेड टू शो डिम्पल जी इन, यू नो, इन अ रोमांटिक एंगल, एक ऐसी फिल्म जिसमें रोमांस दिखे। तो उन्होंने इन तीनों एक्शन फिल्मों के बाद डिम्पल कपाटिया और दो हीरोज के साथ बनाई थी सागर, विच वॉज अगेन अ स्मैशिंग हिट। वेल, इसी फिल्म का गाना आपके लिए, Only on Purani Jeans, you're listening to me on Mirchi, It's Hot.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। 14 इयर्स के बाद जिस फिल्म से अपना कमबैक किया था डिंपल कपाडिया ने। अच्छा, फिल्म की बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस समय ये सुनो। और इसमें पंचम दा का ये गिटार है शायद, ये जो इस गिटार को वो स्ट्रम कर रहे हैं, अभी बड़ा खूबसूरत सा एक पीस आएगा, वो भी सुनिएगा। आर डी बर्मन साहब के कॉम्पोजिशन, जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए ये लाइन, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, कमिंग अप राइट नेक्स्ट, डिंपल कपाडिया की आंखों पे लिखा गया था ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है और अगला गाना ये ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सो इस गाने में डिंपल कपाड़िया इज वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। हाँ, पूरे गाने में उन्होंने ड्रेसेस पहनी है और सागर किनारे बहुत सिंपली शूट किया गया ये गाना। ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की केमिस्ट्री तो वैसे ही बॉबी में हमने देख ली थी, एकदम यू नो पर्दे पे आग लगा देती थी इन दोनों की केमिस्ट्री। सो दे डिडंट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ स्टेप्स, तो कैजुअली बस हल्का फुल्का डांस करते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके ये गाना जब आता है ना, सागर किनारे दिल ये पुकारे, ओहो हो। किशोर दा और लता जी के पास पंचम दा की ऑफ कोर्स धुन है कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
5: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा। और

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी लेट्स हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्हें बादलों से थोड़ा डर लगता है, और बादल के गरजते हुए को वो एक एक्सक्यूज लेते हुए सामने वाले से चिपक जाते हैं। हाउ रोमांटिक। वैसे मेरी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आई। हमेशा मैंने ऐसी सीन्स को या ऐसे गानों को देख करके सोचा है ना कि कभी तो ऐसा होगा कि कोई बादल गरजेगा और कोई मेरे साथ ऐसा होगा जिससे मैं चिपकना चाहूँगी, बट इट हैज़ नेवर हैपेंड। बट एनीवे, आई विल कीप होपिंग कि ऐसा रोमांटिक सिचुएशन श्रेया की लाइफ में भी आए। ऑन दैट नोट, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, एंड ख्याल रखो अपना। और मुझसे कुछ कहना है ना तो फेसबुक या इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, वहाँ पे बस DM कर देना।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com. Radio Mirchi, it's on.
4: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
0: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स,
3: ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: आर के जूल्स।
1: मंगल आरती,
0: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स।
2: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: 5G Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने फियर्स को समझकर उनका सामना कैसे करें, आइए इस बात को समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मेरा एक दोस्त है जो हम बचपन में ना एक ही कंप्यूटर कोर्स किया करते थे। मुझे याद है कि एक बार हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था, और वो प्रोजेक्ट को जब प्रेजेंट करने का टाइम आया तो मेरा दोस्त गया स्टेज पे और उसको प्रेजेंट करना था। वो ज़्यादातर थोड़ा लोगों को फेस करने में डरता था। तो जब उसको प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना पड़ा, मैंने देखा कि वो जो प्रोजेक्टर का जो लाइट था उसमें मुझे नज़र आया उसके हाथ कांप रहे थे। तो हाथ कांपना जो आप कह रहे थे कि ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि वो एक मानसिक बीमारी जो आपके शरीर तक जा रही, कभी कभी आप इतना नर्वस हो जाते हैं क्योंकि आप यूज्ड टू नहीं है लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट करना, तो नर्वसनेस के कारण आपके हाथ कांपने लगते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता।
4: नर्वसनेस भी तो मन की कमजोरी है ना।
3: लेकिन हर सिचुएशन में मैं नर्वस नहीं होता, जब लोगों को फेस करना पड़ता है तब मैं, अरे यार,
4: क्योंकि उसमें किसी अलग प्रकार का फियर है। देखो, फियर कमजोर मन की रचना है
3: जी।
4: अब यहाँ पर फियर, जब आप लोगों को फेस कर रहे हैं तो आपको फियर क्या है? आपको फियर रिजेक्शन का हो सकता है, आपको फियर जजमेंट का हो सकता है, आपको फियर क्रिटिसिज्म का हो सकता है, आपको ये फियर है कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। वही चीज जब आप लोग नहीं होते,
3: आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं,
4: तो आपको किस चीज का फियर है? उस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो स्टेज फियर है या पब्लिक फियर है, ये बेसिकली फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। कि मुझे फियर है कि मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। और कभी कभी लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते,
3: हमने ही अपने दिमाग में क्रिएट किया,
4: हमने ही अपने दिमाग के अंदर क्रिएट किया होता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: été.
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या नर्वसनेस हमेशा वीकनेस होती है या कभी कभी यही नर्वसनेस हमें बेटर परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर करती है? आइए इस पर्सपेक्टिव को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी सिस्टर ऐसा होता है कि एक क्रिया आपने बहुत बार की है, तो इंसान है वो बहुत रेगुलरली स्टेज पे जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा एक मकाम आता है जब वो स्टेज पे जाता है ना, तो उसके हाथ पैर थोड़े कांपने लगते हैं। इट इज नॉट कि मुझे ऑडियंस को फेस करने में डर है, इट्स नॉट अ फियर ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूँ ये, मैंने 500 शोज किए हैं, तो अब मुझे रिजेक्शन का डर नहीं है। कभी कुछ शोज अच्छे होते हैं, कुछ शोज बुरे होते हैं, तो ये भी पता है, लेकिन फिर भी ना शायद उस मौके का बड़प्पन है या बहुत बड़ा दिन है या बहुत सालों बाद आप स्टेज पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाथ कांपना, हमारे एक डायरेक्टर साहब तो कहते हैं कि स्टेज फियर होना बहुत जरूरी है ताकि तुम उसको आसानी में ना लो, लेकिन इतना भी फियर नहीं होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करे।
4: मे बी वो ये कहना चाह रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कभी कभी हम शब्द गड़बड़ कर देते हैं। फियर तो नेगेटिव एनर्जी है।
3: सही बात।
4: अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं कर सकती। पर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है,
3: वो नहीं होना चाहिए।
4: वो नहीं होना चाहिए, तो आपको उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको ये मौका मिला है तो आपको अपना 100% देना है। आपने बहुत बार किया है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, फियर है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। और बहुत बार करने के बाद कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जितना प्रिपरेशन आपको करना चाहिए था, जो हार्डवर्क आपको करना चाहिए था, जो आपकी सिंसेरिटी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं, आपने उसको ग्रांटेड ले लिया, तो शायद उनका वो भाव था। लेकिन बहुत बार करने के बाद भी अगर आपको नर्वसनेस हो रही है तो भी वो कोई और फियर हो सकता है, पर है वो अपने मन का ही कुछ। समझो आपको ये नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, पर आपको अपने से एक्सपेक्टेशन है कि आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा मुकाम है, मैंने इसके लिए बहुत इंतजार किया था, आज नहीं मैं गड़बड़ कर सकता।
3: सही बात। वो अपने आप पे प्रेशर डाल
4: रहे, तो वो आप अपने आप पर प्रेशर डाल रहे, बना आपको ये फियर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, पर आप इस फियर में कि
3: अगर
4: मैं कैसा करूंगा, बट समवेयर इट इज इंटरनली क्रिएटेड।
3: सही बात।
4: और आप पकड़ लेंगे उसको, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा साइलेंटली बैठेंगे, अपने साथ रिश्ता जोड़ेंगे, अपनी कॉन्वर्सेशन को सुनने की कोशिश करेंगे, आप रियलाइज करें और फिर जेंटली उसको ट्रांसफॉर्म करें। उसको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है कि मैंने मेहनत करी है,
3: सही हो,
4: मैं अपना बेस्ट दूंगा, आउटकम मेरे हाथ में नहीं है,
3: बहुत बढ़िया,
4: कर्म मेरे हाथ में है, मैंने हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, आई विल गिव इन माई बेस्ट, फिर देखेंगे क्या होगा। ऐसे अगर आपको लोगों का डर है तो भी आप अपने साथ बात करें कि अगर ये सामने 50 बैठे हैं सबको पसंद आएगा ये जरूरी नहीं है, मुझे मेरा कर्तव्य करना है, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, कोई अप्रिशिएट भी करेगा, कोई क्रिटिसाइज भी करेगा, पर उसका प्रेशर लिए बिना

0: मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है. सो सेल्फ टॉक, सेल्फ काउंसलिंग इसमें बहुत हेल्प करती है.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर, दिव्यांशु ने एक सवाल लिख के भेजा है कि तनाव में मेरे हाथ बहुत कांपने लगते हैं और कभी कभी इसी वजह से मुझसे गलती हो जाती है। अगर कोई उस समय सबके सामने अपमान करे तो क्या चुप रहना सही है या अपने सम्मान के लिए जवाब देना चाहिए?
4: दो बातें हैं। पहले तो जो वो तनाव से गुजर रहे हैं उसको हील करने की जरूरत है, क्योंकि वो तनाव अभी नॉर्मल नहीं लग रहा है, बॉडी पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। पहले आपके मन पर होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी हेल्थ तक आने लगा है, तो इसलिए उनको कोई ना कोई थेरेपी या कुछ उसका करना चाहिए। देखो, तनाव आप क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर बाहर से हो सकता है, चाहे वो टारगेट का है, डेडलाइन का है, कंपटीशन का है, और प्रेशर हर दिन बढ़ने हैं, लेकिन उस प्रेशर को कैसे फेस करना है उसकी इनर रेजिलियंस आपको डेवलप करनी है। अगर आप रेजिलियंस नहीं डेवलप करते, अपने को शक्तिशाली नहीं बनाते, तो उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। तनाव आप क्रिएट कर रहे हैं, क्या होगा, कैसा होगा, होगा नहीं होगा, जॉब रहेगी, छोड़ तो नहीं देंगे, बॉस क्या कहेगा, ये सब आप क्रिएट कर रहे हैं। तो आप अपने स्ट्रेस को पहले उसको कैसे मैनेज करना है और फिर कैसे उससे फ्री होना है, वो एक चीज है। दूसरी चीज जो आपने कही कि अगर कोई अपमान करे तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी बोलना है सभ्यता से बोलो। एक चीज ये है, कुछ भी आपको बोलना है सभ्यता से बोलो। दूसरी चीज, जिस समय आप बोल रहे हैं क्या सामने वाला सुनने के स्थिति में
3: है?
4: अगर उसको आपके बात समझ में नहीं आ रही, कुछ भी करते हैं ना तो अपने को पूछना चाहिए इससे मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि मेरे इस कर्म से वो रिजल्ट आएगा भी। अगर आपके उस कर्म से उस समय वो रिजल्ट आने ही नहीं वाला तो उस समय चुप रहना बेटर है।
3: बाद में जाके बोलना चाहिए,
4: बाद में जरूर बात करें। कभी कभी उस समय चुप रह रहे हैं लेकिन वो चुप कमजोरी नहीं है, वो विजडम है, वो वीकनेस नहीं है।
3: हाँ, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत
4: लग रहा होगा कि वो वीकनेस है, पर हाँ, वो विजडम है, क्योंकि आपको पता है हाँ, कि आप सड़क पर बीज फेंकेंगे तो उसमें कोई फल थोड़ी ना निकल आएगा।
3: फेंकने वाली बात से याद है कि रतन टाटा साहब ने एक बार बोला था कि टेक द स्टोन्स दैट पीपल थ्रो एट यू एंड बिल्ड अ मॉन्यूमेंट आउट ऑफ इट।
4: राइट,
3: तो जरूरी नहीं है क्योंकि मैं चुप हूँ इसका मतलब मैं वीक हूँ या मैं गलत हूँ।
4: चुप रहना वैसे भी कभी वीकनेस नहीं होती, उसमें बहुत सहन शक्ति लगती है, बट उसको आप सफर नहीं करें, आप उसको दबा नहीं लें, आप जरूर एक्सप्रेस करें राइट टाइम पर। आपका फ्रेम ऑफ जो
3: जब राइट हो
4: वो भी राइट हो, उनका भी राइट हो।
3: सही बात,
4: तो आपकी हाँ दोनों जरूरी है। और अंदर में जो भाव होना चाहिए वो प्रूफ करने का नहीं है, कोई सिद्ध करने का नहीं है, आप जेन्युइनली अपनी बातों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो सही समय देख करके अपनी बात जरूर करनी चाहिए।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर, डॉक्टर नीताबा ने एक सवाल भेजा है कि पति से 5 साल से अलग रह रही हूँ, उनके चीटिंग की वजह से आज भी बहुत तनाव में रहती हूँ, कोई गलती मेरी नहीं थी, फिर भी मन उसी दर्द में अटका रहता है, इस दर्द से बाहर कैसे निकलूं?
4: चीटिंग हस्बैंड ने किया है
3: जी,
4: दर्द आपने क्रिएट किया है। आप भले जीवन भर भी उनको ब्लेम कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि उनका कर्म राइट है,
3: सही बात,
4: पर हमेशा हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हर्ट हमारे लिए नहीं कोई क्रिएट कर सकता है। अब वो सर्कमस्टेंसेस में आपको कैसे आगे बढ़ना है ये आपकी चॉइस है,
3: सही बात।
4: किसी ने आपको चीट किया वो गलत है। अब आपको डिसाइड करना है, पहले तो आपको अपने को हील करना है, और अपनी हीलिंग के लिए आपको कहना पड़ेगा आई चोज टू ट्रस्ट दैट पर्सन, और अगर दोबारा भी मुझे चांस मिलेगा तो शायद हम ट्रस्ट ही करेंगे,
3: शायद हाँ।
4: हम करेंगे ना, फर्स्ट टाइम पर हम किसी को डाउट क्यों करेंगे? चीट करना उनकी नेचर है, ट्रस्ट करना मेरी नेचर है, तो हम जब किसी को ट्रस्ट करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं,
3: सही बात,
4: हम उनके लिए नहीं करते हैं, क्योंकि दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल फीलिंग फॉर मी, सो आई डिड इट फॉर माई सेल्फ। अब उसके बाद अगर ऐसा हुआ ठीक है, जीवन है, जीवन में आप कभी किसी को ट्रस्ट करते हैं, कोई आपको बिजनेस में भी चीट कर देता है, कोई रिलेशनशिप में भी चीट कर देता है, नाउ अब आपको चूज करना है आपको आगे कैसे बढ़ना है,
3: सही बात,
4: व्हाट इज द नेक्स्ट राइट मूव। तो पहले जो हर्ट क्रिएट किया है वो कैसे क्रिएट किया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, एम आई नॉट वर्दी, आप अपने को, आप इस प्रकार के थॉट्स में चले जाते हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सब नहीं सोचे। आप बहुत वर्दी होंगे, केपेबल होंगे, यूनिक होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, लेकिन चीट करना उनका
3: कर्म था,
4: उनका संस्कार है, वो उनकी नेचर है, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। जैसे लोग बिहेव करते हैं वो उनका संस्कार होता है। हाँ, एक कारण कई बार हो सकता है, कभी कभी किसी रिश्ते में अगर बहुत समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में रिलेशनशिप हारमोनियस नहीं है, तो उस रिश्ते में किसी के मन में वॉइड आ जाता है, खालीपन है, आप उस खालीपन को कहीं और से भरने की कोशिश करते हैं जो राइट नहीं है। लेकिन जब हम कमजोर होते हैं तो फिर हमें जहाँ से प्यार मिल रहा है, जहाँ से अपनापन मिल रहा है, जहाँ से अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, हम वहाँ डिपेंड हो जाते हैं और हमारे से कोई भूल हो जाती है। तो ये भी एक बार चेक करें कि वो रिश्ता कैसा था, अगर बहुत समय से उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट थी, वॉइड था, इससे उस व्यक्ति से गलती हो जाती है, गलती, वो गलती है, हम उसको राइट नहीं कह रहे हैं। अब पहला है कि आप अपने को हील करें और फिर अपने से पूछें कि आपको सेकंड चांस देना है कि नहीं देना है, वो तो फिर हर एक की अपनी चॉइस है।
3: आपने एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा ये चॉइस है हमारे पास, और इसी एग्जैक्ट विषय पे एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं, उनका नाम है एडिथ एगर, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द चॉइस, और वो कहते हैं कि हर सिचुएशन में प्रतिक्रिया के बजाय हमको ये देखना कि हमारे पास क्या चॉइस है। बहुत खूबसूरती से लिखते हैं, तो कभी मौका मिले तो जरूर ये किताब पढ़िए।
4: ये दो शब्द बहुत पावरफुल है, माय चॉइस, सारी लाइफ चॉइस है,
3: सही बात।
4: आपको हर्ट होना है, हील होना है, आपको ट्रस्ट करना है, डाउट करना है, आपको सेकंड चांस देना है, नहीं देना है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी,
3: सही बात।
4: और जो आप चूज करते हैं वैसी आपकी लाइफ बनती जाती है, वैसी आपकी डेस्टिनी बनती जाती है।
5: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक अनोनिमस सवाल आया है। लिखते हैं कि बिना किसी गलती के हमें और हमारे बच्चों को दूसरों की वजह से दुख सहना पड़ता है, तो मन में बार बार यही सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस दर्द को छोड़कर जिंदगी में आगे कैसे बढ़े?
3: कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना कारण से हो रहा है। कई बार हमें लगता है अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ भी रहा है, मे बी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, लेकिन वो मेरा ही कमाया हुआ होता है।
2: सही बात है।
3: पर कोई ना कोई निमित्त बन जाता है।
2: हाँ।
3: हमें लगता है ये हमें दुख दे रहा है, पर ये तो जैसे संसार का एक नियम है, सुख दुख का जो नियम है, जो कर्म हमने किया है वही किसी ना किसी रूप में लौट करके आता है।
2: सही बात।
3: पर होता क्या है कि हम अपनी जर्नी को बर्थ से डेथ के बीच में देखते हैं, तो हमें कई बार कुछ गलत नहीं दिखाई देता, पर कर्म शरीर नहीं करता है, कर्म आत्मा करती है। इसलिए पाप आत्मा पुण्य आत्मा टाइटल दिया जाता है, एंड व्हेन यू टेक नेक्स्ट बर्थ वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी भी प्राप्तियां होती हैं जिसके लिए हमें लगता है हमने तो कोई इतना एफर्ट किया ही नहीं है।
2: ये कैसे मिल गया?
3: किसी को देखो, कोई शरीर से परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट शरीर है, परफेक्ट परिवार है, कई चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मिली होंगी, उसके लिए हम कभी क्वेश्चन नहीं करते कि हमें क्यों मिला है, लेकिन वो भी हमारे पुण्य का ही फल है। पर अगर कहीं से दुख मिल रहा है, पहले तो दुख हम क्रिएट करते हैं, चैलेंज हो सकता है।
2: सही बात।
3: कोई बिना कारण से अपमान कर रहा है, कोई बिना कारण से तंग कर रहा है, अब उसको कैसे डील करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन ये नहीं सोचे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट है, इसलिए हम गीता का भी कहते हैं ना, जो हुआ वो भी सही है, जो हो रहा है वो भी सही है, और जो होगा वो भी सही है, वो एक्यूरेट है। अब आप ये देखें कि उसको फेस कैसे करना है, उससे अफेक्ट कैसे नहीं होना है। बाकी कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
3: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
5: नो
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
8: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, दीपाली जी का सवाल है कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे लड़कों की तरह रहना पसंद है, इस वजह से लोग खासकर लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हूँ, क्या मैं गलत हूँ?
3: हमने पहले भी इन चीजों पे कई बार बात की। इसमें क्या होता है कि सोसाइटी से हमें एक्सेप्टेंस चाहिए और कभी कभी ये चीजें सोसाइटी के लिए थोड़ी नई है। सोसाइटी इनके बारे में अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। थोड़ी बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है लेकिन तो भी बहुत कम है।
2: सही बात,
3: टैबू भी है, इसको गलत तरीके से भी देखा जाता है। इसलिए ये चीज वेट करना कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे, पहले आप अपने को एक्सेप्ट करना शुरू करें।
2: ये बहुत जरूरी है।
3: हम डिफरेंट हैं पर हम हर एक यूनिक हैं, हम हर एक वर्दी हैं। पीपल हमें उतनी ही वर्थ दे पाते हैं जितने वो केपेबल हैं।
2: जितने वो केपेबल है
3: वो हमें उस तरह से नहीं ट्रीट कर पाते जितने हम केपेबल है।
2: सही बात है।
3: जितना आपके पास है आप उतना ही तो दे पाएंगे। दे गिव आउट ऑफ देयर कैपेसिटी, देयर केपेबिलिटी। तो अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या उन्होंने शुरू से वो करते हुए देखा होता है, मजाक बना रहे हैं या कुछ ऐसे टर्म्स यूज कर रहे हैं या आपको थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आई नो इट इज टफ, हर एक को प्यार काइंडनेस रिस्पेक्ट चाहिए, बट दैट इज द मोमेंट व्हेन यू ट्रीट योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट। और बाकी तो इन चीजों की अवेयरनेस बढ़ रही है, आप भी इन चीजों की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। आप भी अपने को इतना एजुकेट करें क्योंकि धीरे धीरे अगर आप सोसाइटी के अंदर भी देखें तो जो डिफरेंट थे उन्होंने ही एजुकेट करना शुरू किया।
2: They brought about the change.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हमें जज क्यों किया जाता है, चलिए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे, नॉर्मली वो प्यार से विदा करती है, कहती है बेस्ट ऑफ लक, उसने आज कहा तुमने शेव क्यों नहीं किया, और मैंने कहा अरे मैं भूल गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शक्ल पे अगर ज्यादा बाल भी आ गया, इंसान तो वही रहा ना मैं, तो सवाल जो है या जो कॉन्वर्सेशन जो वो तो वही निकलेंगे। तो सही कहा मैंने उनसे?
4: बढ़िया, बिल्कुल ठीक।
3: ठीक है ना, तो ऐसा क्यों होता है कि हम सबको इंसानी तौर पर उन सब चीजों से जज किया जाता है जैसा हम बाहर दिखते हैं, ना केवल जैसा कि हम अंदर हैं?
4: दो कारण है, एक तो ये है कि कभी कभी इट कुड बी जस्ट क्लेनिनेस एंड हाइजीन, इट इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट आप कैसे दिखते हैं। एक तो बेसिक एटिकेट्स भी होते हैं
3: जी।
4: दूसरा ये भी है कि हम बहुत समय से ये भूले हुए हैं कि मैं आत्मा और मेरा शरीर है
3: जी।
4: हमें लगता है रोज शीशे में देखते देखते एक आदत से पड़ गया, और मुझे लगता है ये जो शरीर दिखाई देता है यही मैं हूँ।
3: हाँ।
4: और यही अगर मेरी पहचान है तो मैं आपको भी उसी पहचान से देखता हूँ। सो इफ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दिस बॉडी देन द फर्स्ट थिंग इज आई व्हेन आई लुक एट यू, और उसमें भी क्या होता है, जिसको जिस चीज से ज्यादा प्यार होता है, समझो बॉडी के अंदर भी किसी को अगर जूतों से बहुत प्यार है तो वो पहले दूसरे के शूज नोटिस करता है, किसी को ड्रेस से बहुत है तो वो देखता है उसने ब्रांडेड पहना है क्या पहना है,
3: घड़ी कुछ
4: घड़ी है या कुछ भी है। तो जो भी चीज आप समझते हैं आपकी पहचान है वो आप ज्यादा उसके अंदर नोटिस करते हैं। तो इसलिए इस चीज की प्रैक्टिस करना कि हम ये बॉडी नहीं है, ये कॉस्ट्यूम है, सबका अलग अलग है, ये सब चोला है, कॉस्ट्यूम है, सबने धारण किया हुआ है, लेकिन इसको चलाने वाली, इन आंखों से देखने वाली, इन कानों से सुनने वाली, इस मुख से बोलने वाली, मैं आत्मा अलग हूँ।
3: क्या बात है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस।
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
6: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Power to face होती क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: तो ये जो शक्ति है, ये सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस जो है, ये कैसी शक्ति है? होती कैसे है? मतलब इसको बिल्ड कैसे करते हैं?
4: सारी शक्तियाँ जो है, जो हम भले भिन्न भिन्न शक्तियों की बात कर रहे हैं, ये देखो इसलिए कहते हैं शिव शक्ति.
3: जी,
4: बिल्ड माना जितना आप योग करते हैं, मेडिटेशन के प्रैक्टिस करते हैं, ये शक्तियाँ आती हैं. लेकिन इट्स जस्ट लाइक आप मसल कैसे बिल्ड करते हैं,
3: उस पे एक्सरसाइज करके उसको रेपिटेशन देके. हाँ,
4: रेपिटेशन, द वर्ड इज रेपिटेशन. जैसे पहले तो जिम जाना है, तो पहले तो परमात्मा से कनेक्ट होना है. उसके बाद जिम जाने के बाद भी आपको वो चीज रिपीटेडली करनी पड़ेगी, तो ही तो वो मसल डेवलप होगी. ये भी ऐसे एक, जैसे वो बॉडी के मसल है, ऐसे ये सोल के मसल है, ये स्ट्रेंथ है, इनर पावर है. तो आप कोई भी शक्ति को जब बार बार अपने जीवन में यूज करते हैं, तो वो शक्ति अपने आप बढ़ने लगती है, फिर वो नेचुरल हो जाती है.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पे सुबह की नींद को हम जेंटली नहीं बल्कि फुल ऑन मिर्चीदार तरीके से भगाते हैं भाई, बॉलीवुड के मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले कर। चाहे तुम अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हो या फिर सबवे पकड़ रहे हो या घर के लैपटॉप को खोलकर 5 मिनट्स के नाम पर अपने लाइफ के डिसीजन रिकन्सिडर कर रहे हो, आई हैव गॉट यू फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। बिकॉज ऑनेस्टली यार, देसी मॉर्निंग्स का फॉर्मूला काफी सिंपल है। गर्मा गर्म चाय हो, गॉसिप उससे भी ज्यादा गर्म हो, और अलार्म को इग्नोर करने का टैलेंट तो हम बचपन से सीख कर आते हैं, जैसे कि हम अपनी मम्मा की डांट को इग्नोर करते हैं। आज का शो इज पैक्ड विद बॉलीवुड का मिर्चीदार बैंगर म्यूजिक, मस्ती, अ पिंच ऑफ नॉस्टैल्जिया और वो रैंडम देसी कॉन्वर्सेशंस जो कभी तुम अपने दोस्तों के साथ बैठकर किया करते थे। बस वॉल्यूम बढ़ा लो, स्माइल को चढ़ा लो और मिर्ची को अपने साथ बनाए रखो। और मुझे भी, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। थोड़ी देर में बताऊंगी तुम्हें कॉन्टेस्ट के बारे में, तब तक के लिए तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स। गुड मॉर्निंग टू यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: क्या बनाए आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है। खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Amy Wilk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk live on Friday, August 28th at Carteret Pike.
9: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
10: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
11: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
10: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
11: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islin.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
15: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
14: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
16: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
18: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and it's time for this day that year. Only on Mirchi Mornings. सबसे पहले चलते हैं 1227 में. Mongol Empire के founder Genghis Khan passed away. Fast forward to 1590, explorer John White returns to Roanoke Island and finds the entire English colony deserted. 116 लोग गायब हो गए थे. Then 1877 में astronomer Asap Hall discovered Phobos, one of Mars moons. नाम थोड़ा विलन टाइप का है लेकिन मार्स का छोटा सा कॉस्मिक कंपेनियन है. 1920, a massive milestone. The US ratified the 19th Amendment, giving women the constitutional right to vote. ये हिस्ट्री में काफी बड़ा मोमेंट था. एंड फॉर अस देसीज, 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज रिपोर्टेड टू हैव डाइड फॉलोइंग एन अलेज्ड प्लेन क्रैश इन ताइहोकु, नाउ ताइपे. हिज लाइफ एंड डिसअपीयरेंस रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डिबेटेड हिस्टोरिकल स्टोरीज. एंड फाइनली 1958 में व्लादिमीर नाबोकोव्स कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवल लोलिटा वॉज पब्लिश्ड इन द US. व्हाट्सएप का नंबर बताने से पहले तुम्हें ये बता दूं कि मिर्ची करेगा बंधन पूरा ये कॉन्टेस्ट चल रहा है. इसमें तुम्हें अपना फोन उठाना है, व्हाट्सएप करना है मुझे अभी के अभी. सबसे पहले टाइप करना है बंधन BANDHAN एंड साथ में भेजना है अपनी क्यूटेस्ट सिबलिंग मोमेंट्स के पिक्चर्स और उसे भेज देना है 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244 पर. तो मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS. और उसके बाद वेट करना है मेरे कॉल का टू पार्टिसिपेट इन मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट ओनली ऑन मिर्ची. जल्दी जल्दी अपने पिक्चर्स भेजो फॉर राखी स्पेशल कॉन्टेस्ट ऑन मिर्ची. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
0: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंस मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जैसी वालों तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमए वर्क आ रहे हैं लाइव।
3: किस्मत बदलती देखी मैं।
4: आजा कुड़िए वन गन अप्ले के सीधे कॉन्सर्ट में।
5: नीर में कम तंदे सारे छट के तेरी वंगदा लाला नाप।
4: Amit Jaitley of Sai USA Inc. presents Amy Virk Live Friday, August 28th, at 8:30 p.m. at the brand new venue, Carteret Performing Arts Center. Book your tickets now at carteretpack.com, saiusa.com or sulekha.com.
6: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
7: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
6: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड मिर्ची मॉर्निंग्स में ये रहा तुम्हारा वेदर का हाल चाल. राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 72 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काईज आर पार्टली क्लाउडी, लेकिन फील हो रहा है 75 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास. और सुबह 6 से 7 के बीच में तो हमने थोड़ी बहुत रेन भी देख ली है, 1 मिलीमीटर की बरसात और एक्सपेक्टेड है थ्रू आउट द डे. और अभी थोड़े बहुत बादल जो है वो सेटल इन हो रहे हैं, मतलब रेन ने अटेंडेंस लगा दी है, अब देखना है बरसेगा कब. आज का हाई reach around 86 degrees Fahrenheit, but it could also feel like 90 degrees Fahrenheit. यानी कि humidity, sunlight और wind मिलकर थोड़ा सा warm कर रहे हैं आज के दिन को. Yesterday का high था 84 degrees Fahrenheit, so today it's just a little bit warmer. लेकिन कुछ ज्यादा dramatic नहीं है. Overall expect a mix of clouds, some sunshine and a tiny chance of rain. तो बाहर निकलते time अपना umbrella carry करना बिल्कुल मत भूलना, साथ साथ में carry करो अपना water bottle, keep yourself hydrated. अपना SPF 50 वाला सन प्रोटेक्शन लगाना बिल्कुल मत भूलना और ऑफ कोर्स लेयर के प्लेयर बनकर बाहर निकलना, क्योंकि मौसम और तापमान दिन भर फ्लक्चुएट करने वाले हैं. और अभी आने वाले हैं मिर्ची दर बैंगर्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. बट बिफोर वी गेट टू द बैंगर्स, लेट मी रिमाइंड यू, मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट में अभी के अभी अपना व्हाट्सएप खोलो, उस पर लिखो बंधन और मुझे भेज दो अपनी क्यूटेस्ट सिबलिंग पिक्चर्स 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244 पर. यहाँ पे तो मुझे DM कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड देन वेट फॉर माई कॉल. राइट नाउ मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and it's time for मिर्ची आवा का 3 only on मिर्ची Mornings. सबसे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इमीडिएटली ट्रांसफर करने का टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर नियरली 3 इयर्स इन प्रिजन. रिपोर्ट्स हैव साइटेड कंसर्न्स इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर, heart palpitations and severe mental stress. There have also been allegations surrounding his treatment in custody. His health situation is developing, so we'll keep this one factual and respectful. Number 2 par India mein Delhi government ne class 9 students ke liye third language mandatory kar di hai. Aur catch ye hai ki jo students class 9 ka third language exam clear nahi karenge, they won't be allowed to appear for the class 10th board exams. साथ साथ मैथ्स एंड साइंस के कॉमन एंड एडवांस लेवल भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड लास्टली बांग्लादेश के टेस्ट सीन में ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड टेस्ट के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और एक चेंज हुआ है. ओपनर जेक वेदरऑल्स को ड्रॉप करके मैट रेनशो को स्क्वाड में शामिल किया गया है. वेदरऑल्स फर्स्ट टेस्ट नॉट एग्जैक्टली अ ब्लॉकबस्टर, 23-0. मीनवाइल बांग्लादेश वन द फर्स्ट टेस्ट बाय 9 विकेट्स. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर विद मी प्रिसिला. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burca, burca. La virpa, la burca.
1: Mirchi, burca. Hello.
2: Could I speak to Manish, please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
1: ओके
2: मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में। यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
2: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था। तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे, तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: मैनू नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
9: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
10: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
7: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, योर एंटायर बिजनेस। Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
15: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
16: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
15: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
17: सुनो ब्राइड, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
18: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
17: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
18: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
19: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार,
19: मैंने आपका नमक खाया सरदार,
20: अब मिर्ची खा।
21: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
22: मिर्ची फ्रेश माल।
23: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और बॉलीवुड की एक खबर आ रही है मेरे पास जो मैं तुम्हें बता देती हूँ अभी। एक्टर विजय वर्मा वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑन स्टेज बाय होस्ट डॉली सिंह, जिन्होंने उन्हें कहा नेशंस बिगेस्ट रेड फ्लैग। ऊफ, विजय इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर द हिल्स हिट बैक विद बाय अ रेड क्लॉथ एंड मेक रेड फ्लैग्स। डॉली कॉल्ड दैट कमबैक लेम एंड विजय बेसिकली सेड ही वाज लेटिंग हर टेरिबल कॉम्प्लीमेंट्स स्लाइड। नाउ आई डोंट नो अबाउट यू, बट दिस इज एग्जैक्टली kind of red flag conversation where nobody is actually waving a red flag, they are just throwing shade. और अब इस shade को थोड़ा सा उजाले में लाते हैं, यानी थोड़ा sparkle बबराते हैं यहाँ पर। Tanishq presents Festival of Diamonds. You can get up to 25% off on diamond value and making charges. दोनों ही Tanishq पर मिल रहा है। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हें और चाहिए तो अपना पुराना gold लेकर जाओ जो कि 18 carat से above हो, उसे जाकर exchange कराओ at zero deduction. So maybe forget the red flags and go look for red carpets to wear those diamonds at. Of course, terms and conditions applied है। तनिष्क का फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स चल रहा है और अभी चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ओ दलजीत दोसांझ,
3: बड़ी पाजी,
2: आप क्या लेने आए हो?
3: शुद्ध देसी घी।
2: लो पाजी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
3: घी टेस्ट के लिए थोड़ो खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
2: नानक घी पाजी,
3: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
11: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
13: Amy Wirk Live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wirk Live on Friday, August 28th at Carteret Park.
14: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
15: It's 9:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
16: Yeah. Yeah. You already know what it is. Okay.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ओला, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स टाइम फॉर आवर बर्थडे बैश। यहाँ पर कैंडल्स कम बढ़ जाती है लेकिन सेलिब्रिटी के नाम कम नहीं बढ़ते। सबसे पहले तो विश यू अ वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जो भी आज सेलिब्रेट करें, आज का दिन तुम्हारा है, सो एंजॉय इट टू द फुलेस्ट, ट्रीट योर सेल्फ एंड प्लीज जो कुछ भी करना चाहते हो, जो तुम्हारे मन को भाए, वो सब कुछ करो। आज के दिन कैलोरीज भी काउंट नहीं करती, तो यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट। साइंस नहीं है, बस बर्थडे का इमोशन है, समझे। अब देखते हैं आज तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कौन कर रहा है। हॉलीवुड लेजेंड्स, वीव गॉट द लेट रॉबर्ट रेडफोर्ड, एंड देन वीव गॉट क्रिश्चियन स्लेटर, एडवर्ड नॉर्टन, एंडी सैमबर्ग हु इज वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम ब्रुकलिन 99, एंड मालकम जमाल वॉर्नर, मैडलिन पेच फ्रॉम रिवरडेल एंड माया मिचेल फ्रॉम द फॉस्टर्स। म्यूजिक साइड पर बर्थडे वाइब्स जाती है लेजेंडरी इंडियन पोएट, लिरिसिस्ट एंड फिल्म मेकर गुलजार साहब को, भंगड़ा किंग दलेर मेहंदी साहब को एंड अमेरिकन रैपर एवरलास्ट को, एंड साथ में इंडी पॉप सॉन्ग राइटर एंड सिंगर क्लेरो। और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, बल्कि तुम्हारा बर्थडे बैश होना चाहिए, बिकॉज सी हाउ कूल द लिस्ट इज जो तुम्हारे साथ आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो खाओ पियो ऐश करो और मुझे अपने शाउट आउट भेज सकते हो। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, जहां पर तुम्हें कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची पर, फटाफट से टाइप करो बंधन और उसके बाद अपने क्यूटेस्ट सिबलिंग मोमेंट्स के पिक्चर्स मुझे भेज दो, या तो इंस्टाग्राम पर मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, या फिर व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर राइट अवे, दैट इज 9033647244। फटाफट से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो एंड वेट फॉर माय कॉल। एंड राइट नाउ मिर्ची, इधर गाने सुनने का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
7: फूड
8: यस,
7: शॉपिंग
8: यस,
7: एंटरटेनमेंट
8: डबल यस,
7: और हेल्थ फेयर
8: ऑफ कोर्स, सब कुछ एक ही जगह। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्ण मंदिर, मॉर्गनविल।
9: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
11: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
10: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
12: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you. Sun rahe the Mirchi Mornings. Aur ab sunne wale ho gold car latest rate update.
2: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,390. $4,390 per troy ounce gold ki price trade kar rahe hain. Silver also trending higher at $65. $65 per troy ounce aaj silver trade kar rahi hai. हालांकि गोल्ड $5,600 एंड सिल्वर $120 पर ट्राई आउंस की पीक टच कर चुके हैं और इस समय करेक्शन के साथ गोल्ड $4,390 एंड सिल्वर $65 पर ट्राई आउंस ट्रेड कर रहे हैं। दिवाली पुष्य नक्षत्र इससे पहले गोल्ड वापस अपवर्ड एग्रेसिव ट्रेंड ले आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें rajjewels.com पे जहां पे 0% इंटरेस्ट पे जीरो फाइनेंसिंग जीरो डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं rajjewels.com की टीम को। कैसे आइए लाइफ के प्रेशियस पल्स सेलिब्रेट करें एट rajjewels.com। थैंक यू
1: एंड देयर यू हैव इट लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Milci.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana, Gabana, Burga, Burga, la Virtua, la Burga, Milci, Burga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी,
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली है आपको?
2: जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ, क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
2: राइट?
3: चलिए। अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड
2: पूजा
3: पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
3: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली है तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: फिर देखिए।
3: हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
2: आज मैं तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ों को। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
11: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Apne sapno ki unchai ko chune ke liye AIIMS Education hamesha aapke saath hai.
19: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding,
20: EKG and phlebotomy,
19: medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
18: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
0: जैसी वालों उसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव।
21: किस्मत बदल दी देखी मैं।
22: आ जा कुड़िए वन गाना प्ले के सीधे कॉन्सर्ट में।
23: नील में कम तंदे सारे चढ़ के तेरी वंग दा लाला नाप।
24: अमित जेटली ऑफ साई विश इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28th रात 8:30 बजे से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट cartelettpack.com, saiusa.com और sulekha.com।
25: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
26: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
25: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Let's check what the stars have planned for us today. Only on मिर्ची mornings.
2: मिर्ची राशि zone.
1: It is, यानी कि मेष राशि. आज योर ब्रेन इज ऑन. इंटेलेक्चुअल एनर्जी से ऑब्स्टिकल्स को इजिली टैकल कर पाओगे और फाइनेंसेस में भी गुड न्यूज का चांस है आज. लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड ग्रीन. लकी नंबर इज 8. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्क को थोड़ा सा साइड में रखो एंड ब्रीद. सेल्फ केयर, गुड फूड एंड लाइफ लिटिल प्लेजर्स पे फोकस करो. स्प्रेडशीट बाद में भी खोल जाएगी और बाद में भी बन जाएगी, पक्का प्रॉमिस. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 6. जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज इम्पल्सिव डिसीजन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर वेल बीइंग. हर लेट्स जस्ट डू इट थॉट को फॉलो करना जरूरी नहीं मेरे दोस्त. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 3. कैंसर यानी कर्क राशि, एनर्जी फुल चार्ज है, बट छोटे छोटे वर्क प्रॉब्लम्स को पर्सनली मत लिया करो यार. बॉस को ईमेल भेजना तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है. लकी कलर फॉर यू इज कोरल. लकी नंबर इज 2. लियो यानी कि सिंह राशि, फाइनली सम ब्रीदिंग रूम. रीसेंट टेंशन और डेली स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा. टेक दैट विन लियो, बिना विक्ट्री स्पीच दिए. लकी कलर फॉर यू इज गोल्ड. लकी नंबर इज 9. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, इवनिंग में सोशल प्लान्स आर लुकिंग गुड. बस फूड एंड ड्रिंक्स में मॉडरेशन रखो. एक प्लेट चाट के बाद आई हैव नो रिग्रेट्स बोलना अलाउड है, लेकिन 10 प्लेट चाट के बाद थोड़ा रिकंसिडर करना पड़ेगा. लकी कलर इज मिंट. लकी नंबर इज 5. एंड दैट वाज राशि जोन पार्ट 1. अभी आएगा राशि जोन पार्ट 2, लेकिन उसके पहले आएंगे मिर्चीदार बैंगर्स और उसके पहले जाएंगे आप मुझे फॉलो करने मिर्ची प्रिस. मेरा हैंडल नेम है इंस्टाग्राम और एक्स पर. फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो, ड्रॉप मी अ हाय. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: हाँ, और तू तो देवी है ना।
0: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: कोई भी दिन त्योहार हो उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है। आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह ना दे बात पक्की हुई करो मुंह मीठा। अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहा तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता। नया घर लो कराओ मुंह मीठा, नए घर में नया मेहमान आ जाए कराओ मुंह मीठा। ये मिठास खुशियों की है, ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे। ले आपको तो भूल ही गए, इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा।
3: नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स।
4: It's 10:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
5: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Sri Krishna Mandir, Morganville.
4: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
6: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
7: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
4: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: जय श्री वालों, तुसी तैयार हो? थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमए वर्क आ रहे हैं लाइव।
10: किस्मत बदलती देखी मैं।
11: आजा कुड़िये, वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में।
12: नीर में कम तंदे सारे छट के
11: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28 रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट cartelettpack.com, saiusa.com और sulekha.com।
13: जय गुरुदेव, अवसर आवी ने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन की तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: इंडिया के रंग सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
2: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
1: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM एल्मर बी बॉयड पार्क न्यू ब्रंसविक। फ्री एंट्री एंड पार्किंग। आवर वेबसाइट इज www.newbrunswickarts.org। कॉल ट्रेसी एट 9089172862।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: वेलकम बैक टू राशि जोन पार्ट 2। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब हम बातें करने वाले हैं लीब्रा से लेकर पाइसीस तक।
3: मिर्ची राशि जोन।
2: लीब्रा यानी कि तुला राशि, आज ओल्ड टेंशन को रिलीज करने का परफेक्ट टाइम है। रीसेट करो, प्रायोरिटीज रियलाइन करो और जो चीज पीस नहीं देती है उसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो प्लीज। लकी कलर फॉर यू इज पीच, लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज सुपर हीरो बनने की जरूरत ही नहीं है। अपनी लिमिट्स पुश मत करो, इंटेंशनल रेस्ट इज योर सुपर पावर टुडे। बेड इज नॉट योर एनिमी स्कॉर्पियो, लकी नंबर इज 4 एंड लकी कलर इज बर्गंडी। सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, पेस स्टेडी रखो एंड ओवरकम इट मत करो प्लीज। हर इनविटेशन, हर फेवर एंड हर प्लान का आंसर यस होना कंपलसरी नहीं होता है, कभी कभी नो बोलना भी चाहिए। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 1। केबरगन यानी मकर राशि, हेल्थ कॉन्शियस चॉइसेस आर योर स्टार्स फेवरेट टुडे, स्पेशली कैफीन एंड स्टिमुलेंट्स थोड़े कट बैक करो, मतलब कि थर्ड कॉफी से पहले मे बी एक ग्लास पानी ट्राई कर लो। लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव, लकी नंबर इज 10। अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, क्रिएटिविटी इज योर हैप्पी प्लेस टुडे, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग, कुकिंग, जो कुछ भी है which makes your brain go ooh interesting, go for it, fresh perspective bhi milega. Lucky color is electric blue, lucky number is 11. And last but not the least, Pisces yani ki mean rashi, romance is in the air, compassionate communication se close relationships aur strong ho sakte hain. Dil ki baat bolo yaar, bas apne chat ko khol kar indicator ko 45 minutes tak stare mat karo. Lucky color for you is rose pink, lucky number is 12. And that wraps up Rashi Zone part 2 only on Mirchi Morning with me Priscilla. बने रहो मेरे साथ on social media as well. X and Instagram पर मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp का number 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.
4: ओ चाने ती कुड़ी, ओ चाने ती कुड़ी।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Amy Wilk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk live on Friday, August 28th at Carteret Park.
4: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची का।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, Mirchi Mornings पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब दी एंड का टाइम आ चुका है, यानी कि यहाँ पर कर्टन रोल हो रहा है, क्रेडिट्स रोल हो रहे हैं, यहाँ पर से रैप अप पैक अप सब का टाइम आ चुका है। लेकिन जाने से पहले तुम्हें याद दिला दूं कि मिर्ची पर चल रहा है कि अमेजिंग कॉन्टेस्ट, यानी कि अमेजिंग कॉन्टेस्ट, वो भी राखी के उपलक्ष्य में। फटाफट से अपना फोन उठाओ, व्हाट्सएप निकालो और टाइप करो बंधन, उसके बाद अपना पूरा नाम टाइप करो और साथ साथ में भेजो मुझे अपने क्यूटेस्ट राखी मोमेंट्स, सिबलिंग मोमेंट्स, कोई भी अच्छे से पिक्चर्स जो तुम्हारे भाई बहन के साथ है वो भेज सकते हो तुम 9033 मिर्ची पर। That's 9033647244। और भेजकर करना क्या है, वेट करना है तुम्हें मेरे कॉल का जो कि जल्दी आएगा और उसके बाद तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे, मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट में। एंड यू नो व्हाट द गुड न्यूज इज कि तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। फटाफट से अपनी एंट्रीज भेजो ताकि तुम राखी के पहले कुछ जीत सको अपने भाई या बहन के लिए। अभी के लिए फिलहाल टाटा बाय बाय है, मिलूंगी तुम्हें कल। छोड़ के जा रही हूँ तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स। मेरा नाम है प्रिसिला एंड ऑफ कोर्स सुन रहे थे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। सुनते रहो ना यार, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La viva la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान.
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ.
3: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
2: दिमाग खराब है तेरा? अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तो सोच कम से कम.
3: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान संभाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
2: स्वर्गीय नहीं, तो अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
3: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
2: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान मैं जिंदा हूँ भाई. मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप. मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हो, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
2: डॉक्टर बोल रहा हूँ.
3: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका. केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले.
2: परिवार वाले आदमी से बात करता है कौन?
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप. आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
2: जी
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
2: मेरी बात सुनिए सर,
3: आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं.
3: सर मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Amy Wilk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk live on Friday, August 28th at Carteret Park.
11: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
0: इस राखी बोल दो दिल की बात, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
7: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: इंडिया के रंग सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह
1: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला ट्रेडिशनल डांसेस लाइव म्यूजिक भजन डिलीशियस फूड शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज
0: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM एल्मर बी वॉइड पार्क न्यू ब्रंसविक फ्री एंट्री एंड पार्किंग आवर वेबसाइट इज www.newbrunswickarts.org कॉल ट्रेसी @ 9089172862

0: Mirci. Iscabana, puscabana, sacabana, rabana, burca, burca, la
1: vieta la burca. Mirci, burca. Hello.
2: Could I speak to Manish, please? मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट. एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
2: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: जय गुरुदेव. अवसर आवी ने उभो छा आंगणे. चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए. अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा 14 सितंबर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 7323578200. जय गुरुदेव.
8: जैसी वालों, तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव.
9: किस्मत बदल दी देखी मैं.
10: हाँ जा कुड़िये वन गन अपले के सीधे कॉन्सर्ट में.
11: नीर में कम तंदे सारे छट के तेरी वंगदा लालानाप.
10: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28 रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर. बुक योर टिकट्स नाउ एट cartelettpack.com, saiusa.com और sulekha.com.
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
0: इस राखी बोल दो दिल की बात, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: कोई भी दिन त्योहार हो, उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है। आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह न दे, बात पक्की हुई, करो मुंह मीठा। अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहां तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता। नया घर लो, कराओ मुंह मीठा। नए घर में नया मेहमान आ जाए, कराओ मुंह मीठा। ये मिठास खुशियों की है, ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे। ले आपको तो भूल ही गए, इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा।
10: नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स।
11: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना, वो कहते हैं हैंगओवर होता है, एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफकोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: आकाश
3: जी।
4: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना।
3: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
4: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है।
3: मेरी गर्लफ्रेंड है।
4: ओहो, यही मिली है आपको।
3: जी, बहुत पंगे लेती है।
4: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
3: ठीक है,
4: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
3: आकाश मल्होत्रा।
4: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
3: राइट,
4: चलिए। अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
3: जी, डेफिनेटली।
4: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
3: अच्छा,
4: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
3: क्या कह रहे हैं?
4: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा।
3: ये दूसरा क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
4: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना।
3: फिर देखिए,
4: हाँ बताइए।
3: फन की बात अलग है, हाँ, वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
4: अरे नई बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
3: आज तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
4: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
3: जी,
4: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ों को। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
3: मेरा बन गया बहुत कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: देसी खाना,
10: देसी शॉपिंग,
9: देसी कल्चर
10: और देसी एंटरटेनमेंट,
9: बस एक ही डेस्टिनेशन,
10: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर मॉर्गनविल।
11: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
12: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
13: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
12: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
14: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
15: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
16: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
15: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की, एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था, ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है, तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी एंड दैट वाज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया, कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
7: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
8: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
7: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
9: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Amy Wilk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk live on Friday, August 28th at Carteret Pike.
12: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
18: It's 1:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। 1

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन

में ना वो और कमल हासन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज. लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रही थी, तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए. जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए. लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया. सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म ऑफ श्रीदेवी जी. मतलब इस फिल्म के बाद ना अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी. पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर, कम बैक राइट हियर.

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Amy Wilk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk live on Friday, August 28th at Carteret Pipe.
5: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
10: अब मिर्ची का
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको, ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वांटेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस सब।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4 ला.

इस फिल्म से एज म्यूजिक कंपोजर अपनी शुरुआत की थी इलैयाराजा जी ने, और इसी फिल्म से अपना डेब्यू इलैयाराजा के असिस्टेंट बन करके पता है किसने किया था? डी ए आर रहमान। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, यानी श्रीदेवी जी और कमल हासन की फिल्म। इसी फिल्म से ये दोनों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स म्यूजिक कंपोजर्स हमें मिले थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इस फिल्म की बातें और गाने बहुत सारे आज लेकर के आई हूँ, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
3: स्पीकिंग,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
3: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
4: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप, मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सिमरन, तू घर छड़ के किधर जा सकती है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेनू टाइम नहीं दे सकया।
8: नहीं राज, अपने विच पहला वर्गा हुण कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया, तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए, कुछ है जो इन्ने सालों विच नहीं बदलिया है कुछ?
7: हां
8: की
7: नानक रसमलाई? हां सिमरन, हां नानक रसमलाई दा टेस्ट अज भी ओही है जो ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
8: ਰਾਜ
7: ਸਿਮਰਨ
5: ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਸਵੀਟਨੈਸ ਟੂ ਯੋਰ ਲਾਈਫ।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इन टू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
11: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
14: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक. They're beautifully red, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलिया राजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वॉज नन अदर देन ए आर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग अवर राइट नेक्स्ट सुरमई अखियो, ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पे इतना इनोसेंस। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये गाना शुरुआत से एंजॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
0: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंस मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Inefficient.
6: Very complex.
7: Clumsy hoy.
8: Confusion hi confusion.
9: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
11: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
12: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
13: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन्स, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
12: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, एल्मर बी, बॉयड पार्क, न्यू ब्रंसविक। फ्री एंट्री एंड पार्किंग। आवर वेबसाइट इज www.newbrunswickarts.org। कॉल ट्रेसी एट 9089172862।
14: जय गुरुदेव। अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे, ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
15: Amy Wirk Live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wirk Live on Friday, August 28th at Carteret Pipe.
16: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
17: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
18: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
17: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
19: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
17: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हसन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स तो मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हसन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हसन हू सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हसन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हसन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हसन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।
1: ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जैसी वालों तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमए वर्क आ रहे हैं लाइव।
4: किस्मत बदलती देखी मैं।
5: आ जा कुड़िए वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में।
6: नीर में कम तंदर सारे चट के तेरी वंगदा लाला नाप।
5: अमित जेटली ऑफ साई विस इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28 रात 8:30 बजे से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट cartelettpack.com, saiusa.com और sulekha.com।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिर से वो टाइम आ गया जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगला गाना इज़ अ कल्ट सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या ज़िंदगी से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है। सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये। यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी, ओरिजिनली तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था, यही गाना था पुंगात्रु पुथी नाथू, कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, ए जिंदगी गले लगा ले। कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा, कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: గారే గారే
1: కనపడచ్చు
0: గారే గారే
1: దూరం
0: గారే గారే
1: అమ్మకం పట్టుకో

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं ये रोल पहले करने वाली थी डिम्पल कपाडिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोप इन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा देके जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, मैं हूं श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: आकाश
3: जी।
4: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना।
3: बिल्कुल।
4: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है।
3: मेरी गर्लफ्रेंड है।
4: ओहो यही मिली है आपको।
3: जी बहुत पंगे लेती है।
4: अच्छा आकाश ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
3: ठीक है।
4: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
3: आकाश मल्होत्रा।
4: अच्छा आकाश मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना। कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं वो आप फॉलो करेंगे इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
3: राइट बिल्कुल।
4: चलिए अच्छा इसमें ये है मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ। मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
3: जी डेफिनेटली।
4: ओके अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
3: अच्छा
4: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
3: क्या कह रहे हैं?
4: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
3: क्या सर, मतलब नहीं मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
4: नहीं नहीं ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली है तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा। है ना
3: सर, देखिए बात तो
4: सुनिए। हाँ बताइए।
3: फन की बात अलग है, लेकिन वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
4: अरे नई बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
3: मैं तो प्लीज रहने दीजिए इस चीज को, मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
4: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
3: जी,
4: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ो कु। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन
3: मेरा बन गया वो कुकड़ो कु।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग 0 closing कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
16: I am not going to bed with you ever again.
15: But why? What did I do?
16: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
15: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
16: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
15: Yes, come soon. Honey!
16: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
15: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इनकेस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माई हैंडल इज RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: It's 3:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
3: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
4: और तू तो देवी है ना।
2: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स,
5: ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels.
5: viranijewelers.com.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now.

0: the mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
1: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
0: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
1: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
3: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Sri Krishna Mandir, Morganville.
4: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids' activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
5: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
8: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो, सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया, एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी कहीं भी मत जाना।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Amy Wilk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk live on Friday, August 28th at Carteret Park.
4: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
8: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
7: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, एल्मर बी, बॉयड पार्क, न्यू Brunswick. Free entry and parking. Our website is www.newbrunswickarts.org. Call Tracy at 908-917-2862.
9: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
10: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

की टाइम। दोस्तों मंडे का तो अपना स्टारडम होता है और फ्राइडे की अपनी अलग फैन फॉलोइंग। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। लेकिन हमारा जो मंगलवार है वो बॉलीवुड फिल्म के उस सीन की तरह होता है जहाँ कहानी क्वाइटली आगे बढ़ रही होती है। हीरो भी आ चुका होता है, हीरोइन से मुलाकात हो चुकी होती है, विलन का भी हिंट मिल ही गया होता है और ऑडियंस बस ये देखना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल हमारे वीक की तरह मंडे की एंट्री तो हो गई, अब पिक्चर अपनी रिदम पकड़ चुकी है और वैसे भी ये जो हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो एक्साइटमेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है। तो चलिए इस ट्यूजडे की स्टोरी को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं, मूड हल्का रखते हैं, ट्रैफिक को थोड़ा बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना देते हैं और बॉलीवुड का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपके इस हफ्ते का जॉनर चूज करना हो तो वो बॉलीवुड का कौन सा जॉनर होगा? रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टेट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस ट्यूसडे यानी मंगलवार की फिल्म का अगला सीन शुरू करते हैं इस जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान.
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ.
3: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
2: दिमाग खराब है तेरा? अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम.
3: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान संभाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
2: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
3: स्वर्गीय अनिल चौहान, यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
2: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ. वही बैठा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप. मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
2: डॉक्टर बोल रहा
3: हूँ. मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका.
2: ऐसा
3: केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले
2: परिवार वाले आदमी से बात करता है. कौन है?
3: खुशी की बात मत करिए आप. आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
2: जी,
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
2: मेरी बात सुनिए सर.
4: आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं.
4: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Desi khana,
9: desi shopping,
8: desi culture
9: aur desi entertainment.
8: Bas ek hi destination.
9: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
10: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
11: जैसी वालों, तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि एमए वर्क आ रहे हैं लाइव.
12: किस्मत बदलती देखी मैं.
13: हाँ जा कुड़िए, वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में.
14: नीर में कम तंदे सारे चटके, तेरी वंगदा लाला नाप.
13: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे ऑगस्ट 28th रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर. बुक योर टिकट्स नाउ एट cartarettpack.com, saiusa.com और sulekha.com.
15: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
16: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
15: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
16: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
17: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
18: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
19: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
0: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
19: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है.
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर,
20: अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
21: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
22: एक ही होता है।
21: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: कभी किसी ट्रेलर को पॉज करके दोबारा देखा है? शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पहले ना ट्रेलर सिर्फ फिल्म आ रही है यही बताता था, लेकिन अब ट्रेलर डिटेक्टिव गेम बन चुका है। मतलब पहले एक फ्रेम देखो, फिर कमेंट्स पढ़ो, और फिर पता चलता है कि लोगों ने उस एक सेकेंड में ना पूरी थियोरी बना दी है। जी हाँ, कि यार यही कैरेक्टर विलन होगा, इस सीन का कनेक्शन पहली वाली फिल्म के साथ था। मुझे तो लगता है बॉलीवुड फैंस से अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी ट्रेलर से ज्यादा एंटरटेनिंग तो यार उसके कमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी वो कमेंट्स पढ़े हैं तो मुझे जरूर बताना कि सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट क्या थे। वैसे आप ट्रेलर देखते हुए किस चीज पर सबसे पहले ध्यान देते हो? क्या वो म्यूजिक होता है, डायलॉग होता है, एक्शन होता है, या फिर माई फेवरेट कॉमेंट सेक्शन? डीएम ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब ट्रेलर नहीं, सीधा फुल एंटरटेनमेंट। अगला बॉलीवुड गाना ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल, एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तब

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद वीरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
9: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
10: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully red, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
12: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
11: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
12: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
16: It's 4:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
17: Sham Shardar. Let's do not donkey, have a funky time.
18: बचपन में अगर कहीं रेडी होके जाना था तो हमारा काम कितना सिंपल था। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बहुत ही आसान हो जाता था क्योंकि मम्मी हम सबको रेडी करने में बिजी हो जाती थी। चाहे फेस्टिवल हो, किसी की शादी हो, संडे को रिलेटिव्स के घर जाना हो, मम्मी का एक ही मिशन होता था, पूरी फैमिली टाइम पर तैयार होनी चाहिए। क्योंकि पापा पूछ रहे होते थे कि मेरा कुर्ता कहाँ है, बच्चों को मैचिंग कपड़े पहनाया जा रहा होता था, और एंड में मम्मी खुद सबसे लास्ट में तैयार होती थी। तब वो ना बस घर का रूटीन लगता था, लेकिन आज सोचो तो वही छोटा सा केओस कितनी प्यारी सी फैमिली मेमोरी बन गई। और सबसे मजे की बात तो ये है कि अब हम बड़े हो गए, लेकिन फैमिली को रेडी करने का सीन ऑलमोस्ट वही है, बस अब कपड़े चूज करने की बारी हमारी। तो इस आजादी सीजन इसी फैमिली वाली फीलिंग को यूएसए में और करीब ला रहा है ईडन रोप। ऑगस्ट 6 से 16 तक एंजॉय करें फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन, विमेन women and kids or flat 10% off on fragrances. Visit their flagship store in North Brunswick, New Jersey ya nationwide shop kijiye at us.edenrope.com. Eden Rope, a legacy of style. और दोस्तों बचपन में घर से निकलते वक्त आपके घर में सबसे लेट तैयार होने वाला इंसान कौन था?

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

डेट नाइट का एक्साइटमेंट ना दोस्तों रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद नहीं, थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और प्लान चाहे हफ्तों पहले बने हो या शाम को अचानक डिसाइड हुआ हो, रेडी होते वक्त मूड ना ऑटोमेटिकली थोड़ा चेंज हो ही जाता है। फेवरेट आउटफिट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, फेवरेट फ्रेग्रेंस और सबसे इंपॉर्टेंट वो फीलिंग कि आज रूटीन से कुछ अलग होने वाला है। और ऑनेस्टली चाहे सालों पहले की रिलेशनशिप हो या नई नई डेटिंग, कभी कभी ऐसे ही कुछ मोमेंट्स होते हैं जो एक सिंपल से डिनर को भी ना थोड़ा स्पेशल बना देते हैं। तो अगर आजकल आपके कैलेंडर में भी ऐसी कोई इवनिंग आ रही है तो उसे थोड़ा और ड्रेसअप करने का एक बहाना तनिष्क भी दे रहा है। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स विद अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, 0% डिडक्शन on exchange of old gold above 18 carat. Terms and conditions apply. So, aaj hi visit kijiye Tanishq store at 1429 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey and add the diamond glam to your love story. Usi ke saath mujhe zarur bataiye ki aapka ultimate date night Bollywood song kaun sa hai. DM me on Instagram RJ Mirchi Siddhi SIDDHI aur chaliye mere romantic playlist ka ye agla gana right here on Mirchi. It's hot.

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सुरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escapa la buscabana, sacabana.
2: ¡Gambala!
1: ¡Murga, murga! ¡La viva la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¡Hello!
4: Could I speak to Manish, please?
3: Speaking.
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से.
3: ओके
4: मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
3: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
4: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. आप हेलो. वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे. यार मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
14: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज. Comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
15: Amy Wilk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk live on Friday, August 28th at Carteret Park.
16: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: दाल चावल या आलू पराठा, SUV, मिड साइज SUV या फिर सिडान, या जितने ऑप्शंस होते हैं ना उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आप भी मेरे जैसे हो ना, क्या जितने ज्यादा ऑप्शंस होगे उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है, तो ऐसे में ना मैं जो अपने डिसीजंस होते हैं वो आउटसोर्स कर देती हूँ। मतलब मैं खुद डिसाइड ही नहीं करती, किसी और को बोल देती हूँ भाई तू मेरे लिए डिसाइड कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ है ना घर के मामले में बिल्कुल भी फेल होती है। अगर खुद का घर खरीदने का सपना है तो जितने ज्यादा ऑप्शंस हो उतना बेटर होता है, क्योंकि तभी तो पता चलता है ना कि ये जो बैक यार्ड है जो हमें चाहिए वो सच्ची में चाहिए कि नहीं, बैकयार्ड के साथ फ्रंट यार्ड भी चाहिए कि नहीं, या साइड यार्ड भी चाहिए कि नहीं, फ्लोरिंग किस टाइप की होनी चाहिए, घर का जो किचन है वो किस टाइप का होना चाहिए। जितने ज्यादा ऑप्शंस देखने मिलेंगे उतनी ही क्लैरिटी और भी ज्यादा आती है, और वो तभी पॉसिबल होता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा घर अवेलेबल हो फॉर सेलिंग। तो अगर आप भी फर्स्ट होम बायर हो तो चलिए मेरे दोस्त बीच से पूछते हैं फ्रॉम लाइन मॉर्गेज कि मार्केट में फिलहाल घर का कितने सारे ऑप्शंस है, क्योंकि यार एक ही तो जिंदगी है और इतने सारे ख्वाहिशें हैं, एक एक पूरी करना भी तो जरूरी है। तो चलिए पूछते हैं बीश से। ओवर टू यू बीश।
1: Good evening, Mitchell. This is your friend Bish from Lion Mortgage. Hope you all had a good day at work. Turned out to be a nice day. And the U.S. markets extend losses as Treasury yields creep higher. If you've been putting off buying a home because of higher mortgage rates or affordability concerns, today's mortgage market may have more options than you realize. Another product gaining attention is the permanent buy-down mortgage. Instead of simply accepting today's interest rate, mortgage borrowers may be able to permanently reduce their rate, lowering their monthly payment for the life of the loan. And this option has become increasingly attractive as affordability remains a major concern. So friends, buying your dream home advice is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.375%. 20-year fixed mortgage rate, 6.25%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. That is lionmtg.com. The best mortgage isn't necessarily the one with the lowest advertised rate. The right loan depends on your goals, your income, credit profile, down payment, equity, monthly budget, and how long you plan to keep the property. So before you automatically assume I can qualify or I need 20% down, talk to a mortgage professional and find out what's actually available to you. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
0: इस राखी बोल दो दिल की बात, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
3: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
4: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
3: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
5: ओ दलजीत दोसांझ, भाई आप क्या लेने आए हो?
6: शुद्ध देसी घी।
5: लो पारी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
6: घी टेस्ट के लिए थोड़ा खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
5: नानक घी पाजी,
6: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
7: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
8: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
7: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: Amy Wilk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk live on Friday, August 28th at Carteret Park.
14: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
15: Listener MA, back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: It's 5:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Sharda. Let's do not donkey have a funky time.
2: गानों की ना एक अलग ही दुविधा है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और कभी कभी ना गाना याद रह जाता है लेकिन फिल्म ही याद नहीं रहती, और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। कभी किसी रेस्टोरेंट में या रेडियो पर एक गाना बजता है और दिमाग तुरंत बोलता है कि अरे वाह क्या गाना है, पर अगला सवाल शुरू हो जाता है कि ये किस मूवी का गाना था, और बस फिर पूरा बॉलीवुड क्विज शुरू हो जाता है। कोई एक्टर याद आ जाता है, कभी कोई सीन याद आ जाता है, कोई कॉस्ट्यूम तक याद आ जाता है, लेकिन मूवी का नाम लास्ट में याद आता है। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सॉन्ग्स इतने पावरफुल होते हैं कि फिल्म भले ही भूल जाओ लेकिन गाने नहीं भूलते। वैसे आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड गाना है जिसका ट्यून आपको अच्छे से याद है लेकिन मूवी का नाम याद करने में सदियां लग जाती है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और चलिए देखते हैं अगला गाना आप कौन सी मूवी का है ये पहचान पाते हो या नहीं। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
3: जैसी वालों उसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमए वर्क आ रहे हैं लाइव।
4: किस्मत बदलती देखी मैं।
5: हाँ जा कुड़िये वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में।
6: नीर में कम तंदे सारे चटके तेरी वंगदा लाला नाप।
5: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28 रात 8:30 बजे से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट cartelettpack.com, saiusa.com और sulekha.com।
0: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

ओटीटी प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या होता है? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो कहना कि बस एक एपिसोड और, ये सेंटेंस बोलते ही ना इंसान ऑफिशियली 2 घंटे के लिए अनअवेलेबल हो ही जाता है, क्योंकि एक एपिसोड खत्म होता है, स्क्रीन पूछती भी नहीं और अगला शुरू हो जाता है, और हम सोचते रहते हैं कि ठीक है यार इस बार लास्ट एपिसोड, और फिर देखते ही देखते रात के 1:30 कब बज जाते हैं समझ ही नहीं आता। और शायद इसीलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म को हमसे ज़्यादा हमारी सेल्फ कंट्रोल पे भरोसा होता है, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये लोग स्किप नहीं करने वाले, अगला एपिसोड बजेगा ही। वैसे आपके घर में बिंज वॉच चैंपियन कौन है? टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। क्या वो आप हो, आपके स्पाउस हो, या वो दोस्त जो पूरी सीरीज एक वीकेंड में खत्म कर लेता है? फिलहाल ओटीटी एपिसोड नहीं, लेकिन ये अगला बॉलीवुड गाना जो आप स्किप नहीं कर सकते, सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's go not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा, शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर जोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और जोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: आकाश
3: जी,
4: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
3: हाँ, बिल्कुल।
4: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
3: मेरी गर्लफ्रेंड है।
4: ओहो, यही मिली है आपको?
3: जी, बहुत पंगे लेती है।
4: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
3: ठीक है,
4: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
3: आकाश मल्होत्रा।
4: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
3: राइट?
4: चलिए। अच्छा, इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
3: जी, डेफिनेटली।
4: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
3: अच्छा,
4: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
3: क्या कह रहे हैं?
4: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
3: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
4: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
3: फिर देखिए।
4: हाँ बताइए।
3: हाँ, वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया और
4: अरे मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
3: आज तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
4: चलिए, मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
3: जी,
4: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ों। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
3: मेरा बन गया वो कुकड़ों को।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Inefficient,
8: very complex,
9: clumsy or
10: confusion ही confusion.
5: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
12: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक, they're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: क्या बनाए आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है। खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
14: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
15: The
0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Amy Wilk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk live on Friday, August 28th at Carteret Park.
9: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा.
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

बॉलीवुड की कुछ हीरोइंस का लुक ना फिल्म से निकल कर सीधा फैशन मेमोरी बन जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कभी माधुरी का आइकॉनिक इंडियन लुक, तो कभी दीपिका का ग्रैंड ट्रेडिशनल स्टाइलिंग, तो कभी करीना का एफर्टलेस ग्लैम। यार फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन वो लुक याद रह ही जाता है, क्योंकि मेमोरेबल स्टाइल यूजुअली लाउड नहीं होता। आउटफिट, कॉन्फिडेंस और वो केयरफुली चोजन फिनिशिंग टचेस मिलकर ही उसे सिग्नेचर बना देते हैं। और रियल लाइफ में भी किसी की वेडिंग हो, पार्टी हो या स्पेशल इवनिंग, उस पर हम सबका अपना अपना एक हीरोइन मोमेंट तो बनता है। और उसी के लिए तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबाउट 18 कैरेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो मूवी स्क्रीन हो या रियल लाइफ, तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के साथ अपना सिग्नेचर मोमेंट्स आप भी क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों मुझे जरूर बताना कि बॉलीवुड की कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसका लुक आपको आज भी आइकॉनिक लगता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि मेरी फेवरेट हीरोइन का आइकॉनिक गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: हाँ, और तू तो देवी है ना।
0: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Food?
6: Yes.
5: Shopping?
6: Yes.
5: Entertainment?
6: Double yes.
5: Aur health fair?
6: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
7: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
8: Finest kitchens in India. A thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
13: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
14: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
14: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
16: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
17: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
18: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
19: तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: at 6:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price. Sham Shanda, let's do not
1: donkey, have a funky time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हैरत से नहीं, एनर्जी से भर गया था ये ट्रैक, क्योंकि यार ये गाना फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी सुन के यार मूड ना एकदम ऑटो फ्रेश हो जाता था। लकी अली की वॉइस विशाल शेखर के बीट मैजिक क्रिएट कर देता था। और जी हाँ, हैरत वो गाना था जो रणबीर के जो बाइक राइड या कार राइड के सीन्स थे उन सबको भुलाकर अपने इनर ट्रैवलर को जगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर वेगस में ड्राइव कर रहे हो तो मन में हैरत गाना तो बचता ही था। तो चलिए आज इस गाने का टेम्पो फील करते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि हम अभी भी न्यू जर्सी में हैं, लेकिन गाने का तो फील कर सकते हैं बॉस। तो चलिए सुनते हैं हैरत फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी बता सकते हो विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी Insta at RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI, और तब तक के लिए हैरत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
6: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन्स, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
5: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, एल्मर बी, बॉयड पार्क, न्यू ब्रंसविक। फ्री एंट्री एंड पार्किंग। आवर वेबसाइट इज www.newbrunswickarts.org। कॉल ट्रेसी एट 9089172862।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप ही है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना right here on Mirchi, it's hot.

की टाइम। एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज्ड बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज़ में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलोडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों इतना प्यारा गाना इस एल्बम का, वैसे तो यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे। तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la. Rámbala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान.
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ.
3: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
2: दिमाग खराब है तेरा? अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम.
3: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान संभाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है. सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
2: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
3: स्वर्गीय अनिल चौहान, यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
2: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई. मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया? आपकी पोस्टमार्टम, मेरी बात सुन लीजिए आप. मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार? कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हो, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
2: डॉक्टर बोल रहा हूँ.
3: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका. केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले.
2: परिवार वाले आदमी से बात करता है कौन?
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप. आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
2: जी,
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
2: तेरा दिमाग खराब हो गया.
3: मेरी बात सुनिए सर. सर मेरी बात सुनिए. आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं.
3: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Amy Wirk Live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wirk Live on Friday, August 28th at Carteret Park.
7: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
9: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
10: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी, टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर in demand healthcare careers.
9: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
12: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
13: सिमरन, तू कार छड़ के किधर जा सक रही है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेरे को टाइम नहीं दे सकया.
14: नहीं राज, अपने विच पहला वर्गा हुण कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया. तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए. कुछ है जो इन सालों विच नहीं बदलिया? है कुछ?
13: नानक रसमलाई. हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साढ़े व्याह तो पहला सी.
14: राज
13: सिमरन.
15: नानक, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ. Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
17: to aaiye Fashion Queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
16: Shaadi shopping ka complete destination, Fashion Queen.
17: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
18: इंडिया के रंग सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह
15: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला ट्रेडिशनल डांसेस लाइव म्यूजिक भजन डिलीशियस फूड शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज
18: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM एल्मर बी बॉयड पार्क न्यू ब्रंसविक फ्री एंट्री एंड पार्किंग आवर वेबसाइट इज www.newbrunswickarts.org कॉल ट्रेसी एट 9089172862
19: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
20: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
19: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है
21: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
22: एक ही होता है
19: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, अनजाना अनजानी 2010 में रिलीज हुआ वो एल्बम। और आज की जो रिक्वेस्ट आई है, सॉन्ग रिक्वेस्ट, दैट इज फॉर द सॉन्ग तुमसे ही तुमसे। और ये जो रिक्वेस्ट आई है, दैट इज फ्रॉम रिया, जो कि रहती है एडिसन में। और रिया जी कहती है कि यार ये गाना जो तुमसे ही तुमसे गाना है, प्लीज सिद्धि जी बजा देना, क्योंकि ये मूड रोमांटिक है और वेदर भी रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए। तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है, जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था? मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था और इतनी खूबसूरत सी आवाज है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो, मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, जहाँ हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना, तो बस दुनिया रुक जाए। और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट जरूर होता है, जहाँ सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है। तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो। फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
0: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
6: I am not going to bed with you ever again.
5: But why? What did I do?
6: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
5: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
6: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
5: Yes, yes. Yes, come soon. Honey!
6: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
7: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
13: जैसी वालों, तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमए वर्क आ रहे हैं लाइव।
14: किस्मत बदलती देखी मैं।
15: आ जा कुड़िए, वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में।
16: नीर में कम तंदे सारे छट के, तेरी वंगदा लाला नाप।
15: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28 रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट cartelettpack.com, saiyusa.com और sulekha.com।
17: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
18: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
19: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
20: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
21: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
22: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
23: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2010 के एल्बम की, अनजाना अनजानी के एल्बम की, जिसको कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। और फिलहाल जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम राज, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। और यार वो कहते हैं कि यार माहौल इतना अमेजिंग सा है, मौसम खूबसूरत सा है, तो थोड़ा अपबीट गाना चाहिए। जी हाँ, तो इसी के लिए आई फील गुड जरूर बजाइए। तो बस नाम ही काफी है यार। यार, मतलब आई फील गुड एक ऐसा गाना जो बजते ही लगता है कि दुनिया में ना स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रणबीर और प्रियंका की केयर फ्री केमिस्ट्री इन दिस मूवी अनजाना अनजानी, न्यूयॉर्क इन योर लाइट और विशाल ददलानी की वो रॉक स्टार एनर्जी, इस सॉन्ग को हर बीट में ऐसा लगता है कि बस लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और चिल कर लो यार। तो चलिए आज बजाते हैं आई फील गुड फ्रॉम द वंडरफुल एल्बम ऑफ अनजाना अनजानी, जिसका हर एक गाना जबरदस्त है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो ऐसा कौन सा एल्बम है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राज की रिक्वेस्ट पर बजाते हैं आई फील गुड राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Jai Gurudev. અવસર આવીને ઉભો છે આંગણે, ચલો ભેગા મળી ગણેશજીના આગમનની તૈયારી કરીએ। આપણે ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરના ગણેશ ઉત્સવમાં જોડાયો, જેમાં 14 સપ્ટેમ્બર સોમવારે સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન। વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર વિસ્કાટવે ઓન 732-357-8200। જય ગુરુદેવ।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin।
6: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
7: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट
1: गले में।